सुप्रभात। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि। तदनुसार तारीख 21 मई सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये FM सन सिटी है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल

0: रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब से लगाकर सवेरे 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती से रिले होने वाले कार्यक्रम।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा भाग 10। सुबह 7 से भूलिए बिसरी गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। आठ पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और 1 चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनिएगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनिएगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 हेलो फरमाइश और 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 से

7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन जान बची, लेखन विष्णु दत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे? हमें जहाँ तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी। हाँ, जब प्राण तल अच्छा से निकले।
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं। भजन इतना अच्छा है, सुनाता हूँ
1: जी। बिल्कुल।

जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्स ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।

0: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय, जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहें तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है
1: जी।
0: ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलकर लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
1: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, और अब
0: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी। और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

فضفولا انجم صعبين ندخون قد حول

0: चेहरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें थी, बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे और धुन एसटी परमन ने बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस समय इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

अंतराल के बाद फिर से उपस्थित हैं और आपको सुनवा रहे हैं ये गाना शबाब फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शबाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।

0: नास्तिक फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी प्रदीप की और संगीत निर्देशन सी रामचंद्र का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बूट पॉलिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थी। बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस बहुत थोड़ा सा इंतजार।

तुम जाओ तो प्यार आ जाए, ये गीत आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म से और मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत आपने सुना। इसे योगेश ने लिखा था और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: वल्लाह क्या बात है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थीं। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक नजर किसी ने देखा, रंगोली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे बोल। शैलेंद्र ने लिखे थे, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई थी। ये बहुत ही सुरीली नगमे आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है तेरे नैनन का बहुत ही सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आप इससे सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार एस एन त्रिपाठी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपने सुना शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीतकार थे नौशाद, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में, अब सुनिए ये गाना। फिल्म टावर हाउस, आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रोफेसर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना, और शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं।

0: समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
4: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

0: प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश

0: जारी किया है।
1: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया।

0: बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

धुरंधर फिल्म से अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को, इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत था शाश्वत सचदेव का संगीत। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से। अरिजीत सिंह की आवाज है, अमिताभ भट्टाचार्य का गीत और

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हैं। ये FM सन सिटी है, सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार हमारे प्राथमिक केंद्र से रिले होगा।

0: अभिनंदन, नमस्कार सभी सुधी श्रोताओं का। सुबह की पहली चाय हो गई, ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जहां हम बात करेंगे थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा सा संगीत, थोड़े से जीवन से जुड़ी बातें होंगी, तो कहीं आज हम पहलवानी का भी जिक्र करेंगे। शांति और अमन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ चटकारे लेती हुई बातें काम की भी होंगी। ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार। तो मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय करवाते हैं हमारी आज की सार्थक टीम से।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं कैलाश सोलंकी और फारूक अहमद शेख।
0: कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है गजेंद्र सिंह जालसू का।
1: हमारे साथ उद्घोषिका हैं एचपीटी पर विजेता।
0: और वहीं एफएम का कंसोल संभाले है नेमी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
0: परिकल्पना और प्रस्तुत करता है इस प्रोग्राम के संजय व्यास। और इन सभी के साथ मैं हूं कविता
1: और मैं मीता मुल्तानी।
0: तो दोस्तों, हम दोनों हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर नमस्कार। यहाँ हम आधे घंटे का सफर तय करेंगे नए नवेले गीतों के साथ। तो पहला नजराना ये आपके लिए।

0: कहते हैं मीता जी, ऐसा कहा जाता है कि नफरतें जो हैं उनकी जमीन बड़ी लंबी चौड़ी होती है, वो हमेशा मोहब्बत पर कब्जा करती हैं और हंसते मुस्कुराते जो चेहरे होते हैं उसमें जहर घोलने का काम कर देती है। तो खास तौर पे हम सुबह सवेरे अपने दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि ये एक शब्द वो है जो न हमारे फोन में हो, न हमारी जिंदगी में हो, न हमारी डिक्शनरी में हो, न हमारी आदतों में हो। दूसरा शब्द है जिसे आप शामिल कर सकते हैं, वो है ठंडा ठंडा एहसास लिए
1: आइसक्रीम। बिल्कुल।
0: तो क्यों,
1: और ऐसी गर्मी में तो आइसक्रीम का अगर स्वाद चखा दिया जाए तो श्रोताओं को मजा आ ही जाएगा। तो
0: मैं आज हमने
1: मैं आज आपको एक स्पेशल आइसक्रीम के बारे में बताना चाहती हूँ कविता जी।
0: जी बताएं।
1: तो आप भी कहेंगे कि ऐसी आइसक्रीम भी होती है क्या? तो मैं आज बात करूंगी एक ऐसी आइसक्रीम की जिसमें हम देखेंगे कि आइसक्रीम से हम क्या कुछ सीख सकते हैं।
0: जी।
1: तो सबसे पहले आइसक्रीम से आता मैं पहला शब्द आता है आ, और आ से है आत्मविश्वास।
0: जी, जी।
1: तो हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है और जो आत्मविश्वास से भरपूर ऊर्जावान बनता है वो जिंदगी में अपने सारे कार्य स्वावलंबी से आराम से कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है ई। ई से हम कहेंगे ईमानदारी। उसके बाद है स, और स है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बनिए हमेशा। फिर है क्री। क्री से होता है क्रियाशील, तो हमेशा क्रियावान बने रहें। बिल्कुल। और म से मेहनत। मेहनत करोगे तो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे।
0: जी। और म से मन भी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और ये मन कहता है कि आगे बढ़ा जाए खूबसूरत गीत की तरफ।
1: बिल्कुल।

0: कविता जी, अभी हमने श्रोताओं को आइसक्रीम खिलाई तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे विनम्रता से बोलना, दूसरों का आदर सम्मान करना, कभी कोई गलती हो जाए तो उनसे माफी मांग लेना और शुक्रिया अदा करना। ये कुछ बातें ऐसी है जो हर किसी के दिल पर राज करती है।
1: बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और इसमें एक बहुत कीमती बात को जोड़ देना चाहते हैं हम, वो ये है कि आपको अगर खुद की अहमियत को पहचानना है तो उनकी आंखों में देखो,
0: हाँ,
1: जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम है,
0: हाँ,
1: और उससे भी ज्यादा आपके खो जाने का डर है।
0: अरे वाह,
1: है ना। उन आंखों में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सही मायने में हम क्या है। मायने ये नहीं रखता कि कौन आपको पाने के लिए चाहता है, मायने ये रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है।

0: पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गाने चल रहे हैं नए नवेले,
1: बिल्कुल
0: और ये जो है नमस्कार का सफर है, लेकिन जिंदगी के सफर की हम बात करें मीता जी, तो हम बहुत डरे डरे से रहते हैं, न जाने क्यों आज मैं जी ही नहीं पाते, कल की चिंता सताती रहती है, अगले पल के बारे में सोचते रहते हैं ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं, विद्वानों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, जो अपने दोस्त हैं उन्होंने भी कहा है कि जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है ना कल में था ना कल में है, जीवन मात्र इसी पल में है, पर हम ना जाने क्यों फिर भी उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पल को जिए हम, क्योंकि जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें अगर यदि कोई अंगारा भी फेंक देना तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए।
0: हम सरोवर में अंगारे क्यों देखने लगे भला, हम तो पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे चिनारों के वृक्षों की परछाई देखेंगे, और वहां से जो उगते हुए सूरज की रोशनी है वो कितनी चमकदार होती है, बिल्कुल आपके मुस्कान की तरह।
1: अच्छा

0: कविता जी,
1: जी
0: जब
1: मिता
0: हम
1: जी।
0: बात पहाड़ों की कर रहे थे, तो इस गर्मी में इच्छा होती है मन को सुकून देने वाली जगह जाएं, जहां ठंडा ठंडा मौसम हो और झील के बदलते हुए नीले रंग के साथ ठंडी हवाएं और शांत वातावरण हो, प्रकृति से हम जुड़ें और जहां जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से जुड़ना चाहते हो तो प्रकृति का करीब को करीब लाओ, है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: और झील का किनारा तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आपने ये कहा कि जिंदगी को खूबसूरत बनाए, तो इसके लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि रोज शाम होती है, रोज सूरज ढलता है और फिर से दिन का उजाला और सूरज निकलता है। हम
0: हाँ
1: इसके पीछे की एक बहुत ही मजबूत बात भूल जाते हैं कि रोज शाम सूरज ढलता है तो रोज शाम हमारी जिंदगी भी ढलती है। तो हमने जो नहीं किया वो कर लेना चाहिए, और जिंदगी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो प्यार
0: हाँ
1: से जिए, प्यार
0: हाँ
1: बांटे और मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ रहें, इसी से जिंदगी खूबसूरत बनती है।

0: श्रोताओं.
1: गीत नए नवेले जो हैं वो कहते हैं कभी अलविदा मत कहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम केवल नए नवेले गीतों की बात करते रहेंगे तो हमारा जो नमस्कार प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा, है ना?
0: बिल्कुल.
1: तो हम उस तरफ भी बढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम बनता है.
0: बिल्कुल.
1: क्यों
0: तो 9 बजने वाले हैं, तो अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में ठीक 9:10 पर.

यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की

0: की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोड मैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारी माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है, जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार गांधीधाम भचाऊ भीलड़ी धनेरा रानीवाड़ा मारवाड़ भीनवाल मोदरान जालौर मोकलसर समदड़ी लूनी पाली मारवाड़ मारवाड़ जंक्शन ब्यावर अजमेर किशनगढ़ जयपुर जंक्शन जयपुर गांधीनगर स्टेशन बांदीकुई अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है के माध्यम से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव गैस की सप्लाई उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में, और मेरा सबसे अनुरोध है हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम है निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्ते।

0: नमस्कार में।
1: और नमस्कार में, मैं हूं कविता।
0: और मैं मीता मुल्तानी।
1: और समाचारों के बाद का दस्तूर है कि हम एक गाने से अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो एक प्यारा सा गाना पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इतिहास में क्यों है खास आज की तारीख।

0: तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्स है आज की तारीख में। आज ही का दिन 1819 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर पहली बार साइकिल देखी गई, जिसे स्विफ्ट वॉकर कहा जाता था। आज ही के दिन 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया।
1: 1881 और दिन था आज का, क्लेरा बार्टन द्वारा वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी।
0: और 1904 में आज ही के दिन पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
1: आज के दिन यानी 21 मई 1927 को अमेरिकी पायलट चार्ल्स लिंडबर्ग ने स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस नामक विमान से न्यूयॉर्क से पेरिस तक की अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली नॉन स्टॉप सोलो उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी आज ही के दिन।
0: आज ही के दिन 1960 में एक दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, पार्श्व गायक मोहनलाल का जन्म हुआ और इन्होंने खूब अच्छी अच्छी 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए।
1: वर्ष 2003 और दिन था आज का, जेनेवा में 190 देशों ने तंबाकू के विरुद्ध वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए थे आज ही के दिन। वर्ष 1929 21 मई को भारत की पहली एयर कार्गो सेवा कोलकाता से बागडोगरा के बीच शुरू हुई थी।
0: और वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी।
1: सुष्मिता सेन ने आज ही के दिन जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तो श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आज है 21 मई का दिन और जैसा हमने कहा ना कि हम कहते हैं कि एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार करें, तो इसी तरह से संवाद और विकास के लिए आज हम मना रहे हैं सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। यह दिन दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाने और शांति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता के महत्व को गहराई से समझना और विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में इस दिन की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के बाद हुई थी। दोस्तों, यह दिन हमें यह सिखाता है कि दुनिया के अधिकांश संघर्षों को आपसी बातचीत और सांस्कृतिक समझ से सुलझाया जा सकता है। इस दिन दुनिया भर में संगीत, नृत्य और कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। इस संबंध में कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन होता है। लोग विभिन्न संस्कृतियों के खान पान और पहनावे का भी आदान प्रदान करते हैं। और साथ ही आज हम 21 मई के दिन ही मना रहे हैं आतंकवाद विरोधी दिवस।
1: जी, वैसे तो कहते हैं ना कि आतंक की एक ही परिभाषा है, डर और भय। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो पूरे भारत में आज ही के दिन 21 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो आज दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है, हम और आप सभी उसी में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम समस्या है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को दुनिया में अपनी जान गंवानी पड़ी और भारत समेत कई देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये एक ऐसी समस्या है जिसे निपटने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया है। तो आज के दिन को समर्पित करने के साथ साथ हम संकल्प भी लें कि आतंकवाद का विरोध, यानी उन भावनाओं का विरोध जो नफरत पैदा करती है, उस डर का विरोध जो आदमी को आदमी से जुदा करता है, और उस भय का विरोध जो हमने कहीं आपसी विश्वास में खो दिया है, पड़ोसी से पड़ोसी का भय या आपसी रिश्तों में भय, उसे खो दिया है, उसे फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और ये सच्चे मायने में आतंकवाद विरोधी दिवस के प्रति हमारा समर्पण होगा, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और ऐसे कई कृत्य हैं जो सामने आते हैं जिसमें जान माल का नुकसान होता है और लोगों को कई तरह की हानि उठानी पड़ती है, लेकिन उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम है, क्योंकि हमने खुद को एक सीमा में बांध दिया। हमने अपनी सीमाओं में खुद को कैद किया और साथ ही साथ अपने विश्वास को भी सीमित कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो हमें अपने विश्वास के जो बॉर्डर है उसे बढ़ाना होगा, अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों के साथ इंसानियत क्या है ये समझाकर उसे जुड़ना होगा। और फिर से एक बार हमें उन दिनों को जीना होगा जिसमें भय, आतंक और अविश्वास जैसी कोई चीज ही नहीं थी।
0: बिल्कुल। और इस दिन को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज ही के दिन यानी 21 मई को वर्ष 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु की में केशी परम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त वे एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में बहुत सारे प्रशंसक थे और इसी प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें फायदा उठाते हुए किसी लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी इस घटना को अंजाम देते हुए उनकी हत्या कर दी। तो राजीव गांधी बलिदान दिवस को ही हम आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में आज के दिन मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही आतंकवाद का विरोध करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
1: या ये जो नाम है ये इसीलिए गिनवाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, जन कल्याण में जिया, और इसीलिए भारत भारत है,

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लेकिन भारत सरकार ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का 21 मई का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय उत्पादन का सीजन जो है वो मई से शुरू होता है।
2: बिल्कुल सही कहा है। और ये तो कहते हैं ना कि कई सारे परिवारों के जो है जीवन यापन के लिए भी एक प्रमुख साधन भी है, और जो कम से कम विकसित देश हैं उनके गरीब देशों में या कह दें तो वहाँ आय निर्यात राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है चाय। श्रम गहन क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार भी देता है ये चाय। और सिर्फ ये नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फैसलों में से एक है।
1: बिल्कुल।
2: और ये भी कहते हैं कि जिंदगी तंग लगे तो चाय बना लो, दिल में जंग लगे तो चाय बना लो, क्योंकि मसले हजार सही पर सुकून का इलाज एक ही है, चाय बना लो। हम सुनते हैं एक गाना चाय के साथ।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तो दोस्तों आज है गुरुवार है ना
1: हाँ हाँ
0: और गुरुवार का हमारा खास सेगमेंट होता है जो हम पर्यावरण की ओर हमें ले जाता है। उसका उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण किससे प्रभावित हो रहा है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें आज का विषय है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जो महासागर की लहरों की गति से उत्पन्न होती है।
1: यह महासागर की लहरों से चलते हुए पानी की सतह पर बहने वाली हवा द्वारा निर्मित होती है। जैसे ही हवा अपनी ऊर्जा पानी को प्रदान करती है, यह लहरें उत्पन्न करती है जो महासागर में लंबी दूरी तक फैलती हैं। तरंग ऊर्जा परिवर्तक WEC इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और लहरों की गति को बिजली में परिवर्तित करते हैं।
0: हवा जब खुले पानी की सतह पर चलती है तो घर्षण के माध्यम से पानी में ऊर्जा स्थानांतरित होती है और जिससे लहरें बनती है, और इस ऊर्जा के कारण पानी छोटी छोटी लहरों के रूप में गतिशील होता है और फिर बड़ी लहरों में तब्दील हो जाता है। और यही पानी के उठने और गिरने या दबाव में बदलाव का उपयोग करके टर्बाइन और जनरेटर चलाए जा सकते हैं और इससे बिजली बनती है, और ये ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला एक स्रोत है।
1: बिल्कुल, आज के समय में सबसे बड़ा जो है हमारे सामने एक संकट है, जलवायु संकट। आज यह सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं, जिनमें मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जैव विविधता का क्षरण भी शामिल है। विश्व को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से हटकर एक अधिक टिकाऊ, कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणाली की ओर तेजी से और व्यापक ऊर्जा परिवर्तन करना होगा।
0: तो नाम फिर से यहाँ याद आता है, तरंग ऊर्जा, जो बिजली उत्पादन के लिए समुद्री लहरों की शक्ति का उपयोग करती है। एक आशाजनक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें सामने आती हैं, क्योंकि उसमें जो वेव्स हैं वो प्रभावित होती हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके आवास, उनका सूंघने देखने का जो देखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें सौर, पवन, जल विद्युत और तरंग ऊर्जा सहित कई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा। तब जाके हम ये तरंग ऊर्जा का जो है वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि
1: यह नवीकरणीय है, प्रदूषण नहीं फैलाती है और दिन रात बिजली प्रदान कर सकती है। लेकिन तरंग ऊर्जा की कुछ समस्याएं भी हैं। ये महंगी है, इसका रखरखाव बहुत ही कठिन है और यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है।
0: तो इस पर काम तो अभी चल ही रहा है, बहुत हाँ। सारे विद्वान सोच रहे हैं और हम तो शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा।

0: श्रोताओं, आज हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जिनका आज जन्म दिवस है। और सबसे पहले हम याद करते हैं अपने समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी को। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा था और अपनी पैनी कलम से बड़ी साफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। शरद जोशी जी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू किया। वे भारत के पहले ऐसे व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से भी अधिक ज्यादा लोकप्रिय हुए।
1: उन्होंने कहा कि लिखना मेरे लिए जीवन जीने की एक तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देखकर सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि चलो इतने वर्ष तो जी लिया। शरद जी ने अपने जीवन काल में कई सारे व्यंग्य संग्रह, नाटक, दूरदर्शन धारावाहिक जैसे ये जो है जिंदगी,
0: विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की
1: जी, और कई सारी फिल्में उनके नाम हैं जिसमें क्षितिज, छोटी सी बात, उत्सव, सांझ को आंच नहीं, ये कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। 1990 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया।
0: साथ ही आज हम याद करते हैं सर सुंदरलाल को, जो प्रसिद्ध विधिवेत्ता और

0: सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। देश के विकास के लिए औद्योगिकीकरण और शिक्षा प्रसार को उन्नति के लिए आवश्यक समझने वाले सर सुंदरलाल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सुंदरलाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे
1: और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पेड़ों को काटने की बजाय पेड़ों को लगाना अति महत्वपूर्ण है, है ना?
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
1: सुंदरलाल
0: बहुगुणा ने, जिनका आज स्मृति दिवस है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। इन्हें वर्ष 1984 के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है।
1: 2001 में पद्म विभूषण से भी आपको नवाजा गया और इनके कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इन्हें पुरस्कृत किया और कई सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया। और यहाँ हम एक और नाम को याद करते हैं, गामा पहलवान।
0: बिल्कुल,
1: विश्व के एक ऐसे पहलवान जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई कुश्ती हारी नहीं, और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी होगा जिसे रुस्तम जमा पहलवान का नाम न सुना हो। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं और इन्हें शेरे पंजाब रुस्तम जमा कहते थे और द ग्रेट गामा भी इन्हें कहा जाता था।
0: गामा विश्व के एकमात्र पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती कभी नहीं हारी और पूरे विश्व में भारत का नाम उजागर कर दिया। 15 अक्टूबर 1910 में गामा को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया। अपने पहलवानी के दौर में गामा की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय थीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वास्तव में कोई ऐसे पहलवान भी हुए हैं।
1: और ये भी कहा जाता है कि ये जो महानतम पहलवान हैं, इनकी पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में इनके कसरत करने के उपकरण आज भी रखे हुए हैं और एक पत्थर का गोल चक्का है जिसे गले में पहनकर गामा बैठक लगाया करते थे और उसका वजन लगभग 95 किलो है।
0: अच्छा
1: जी, तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ गाने के लिए रुकते हैं और गाना देखते हैं।

0: हम ये नहीं कर पाए, आज हम वो नहीं कर पाए, सुबह हमको ये करना है, सुबह हमें वहां जाना है, मतलब नींद को हम खो देते हैं। नींद कोई लग्जरी नहीं, ये बॉडी को फ्री करने वाला रिपेयर सेंटर है जनाब, तो इसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आपका फोन, आपकी अनावश्यक सोच, आपके टेंशन, चाय कॉफी जैसी ड्रिंक्स, ये नींद का शटर डाउन कर देती है। तो नींद को आप अच्छे से लें
1: बिल्कुल,
0: ताकि सुबह फ्रेश उठेंगे।
1: तो नींद 90-90 मिनट के चक्कर में चलती रहती है। सुबह 6 बजे उठना है तो 11 बजे सो जाओ, या 12:30 बजे, बीच में 12 बजे सोए तो 90 मिनट का चक्कर टूटेगा, सुबह लगेगा
0: जैसे कोई हम जंग के मैदान से आए हैं ना। हाँ। तो सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। गहरी नींद, सही नींद बेहद जरूरी है। और अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं समापन गीत की तरफ।

न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, हम चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे ही दिन भर की थकन खत्म होती है और रात की 11 बजती है और लगता है कि अब सोने चले, तब दिमाग में एक कमेंट्री सी चलती है और क्रिकेट सा चलने लगता है कि आज क्या हुआ, आज

0: वन मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम सन सिटी। मैं हूं आपके रेडियो फ्रेंड कविता नेमी के संग और प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी, जिसमें आप भी हो सकते हैं हमारे संग। डायल करें 25-53-300 25-54-300। हेलो,
1: हाँ जी कविता बहन, नमस्ते। अवरदान उज्जवल गांव उजला।
0: नमस्ते अवरदान जी, बहुत
1: जी
0: स्वागत।
1: और कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे, आप सुनाएं। आपकी आवाज से ज्यादा बायरे की आवाज आ रही है।
1: आवाज ज्यादा चल रही है।
0: हाँ
1: जी, बाबी फिल्म का गाना है। पापड़ हजार ले लो, कोई भी चाल खेलो। पापड़ हजार ले लो, कोई भी चाल खेलो। थोड़ी कहीं पे पर अचल उधार ले लो। थोड़ी कहीं पे पर अकेले उधार ले लो। चश्मा चढ़ा के माला बन गए जनाब हीरो। रही
0: पढ़ाई और लिखाई में तो जीरो जीरो
1: जीरो जीरो। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो।
0: आपने ये फिल्म देखी?
1: हाँ जी,
0: ये फिल्म आपने देखी है क्या?
1: हाँ जी,
0: अरे
1: हाँ ये मैंने देखी है। ये बहुत ही
0: ये शायद जगदीप जी के लिए गाया जाता है ना ये गाना। हाँ बड़ा अच्छा गाना। चलिए, आप तो हमेशा ही ऐसे लुप्त प्राय गीतों को लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ। ये गाना सुनिए।

0: क्या
1: हाँ
0: चुना
1: याद
0: आपने?
1: याद याद
0: याद।
1: याद, हाँ तड़पो के फरियाद करोगे एक दिन मुझको याद करोगे, तो देखो दिया हमने पाने के बाद तेरी याद आई, तेरे
0: जाने के
1: जाने
0: बाद
1: के बाद मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना, तुम मुझे तुम याद, ये
0: फिर तीन ही तो हुए। तुझे
1: हाँ इतने ही याद है भाई।
0: याद न मेरी आई, किसी से अब
1: हाँ ये नए
0: क्या
1: गानों में सही,
0: कहना, सारी सारी रात तेरी याद सताए। चलो तो अभी क्या करें, आगे
1: हाँ
0: बढ़े?
1: बस, हाँ जी
0: चलिए नेमी से पूछते हैं, फेल कर दिया जाए कि पास कर दिया जाए।
1: नहीं वो तो हाँ
0: नेमी कहते हैं पास कर देना
1: जी
0: चाहिए। चलिए फिर इस म्यूजिक ट्रैक को सुनिए और गाइए।

0: बदन पे
1: वदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रहे।

0: ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो
1: हेलो।
0: चैन आ जाए।
2: हेलो कविता जी, कुमार मैम को और रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर को भाई दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई दिनेश सोडा को भी प्यार भरा नमस्कार।
2: कैसे हो कविता जी?
1: अच्छे हाँ
2: हेलो
1: जी, बहुत अच्छे हैं। और आपकी शुभकामनाएं हमें पहुंचती रहती है, और हमारी ओर से भी
2: जी, आपके
1: शुभकामनाएं
2: आशीर्वाद से
1: आपको।
2: कृपा की कामना करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी करते हैं। गाना शुरू करें।
2: जी मैम। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी में हर गम से बेगाना होता है, आ ही चाहता है जब
1: दिल जिस पे दिल
2: आना
1: आना होता है।
2: होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है,
1: चलिए,
2: हर खुशी में हर गम से बेगाना होता है।
1: आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ हम।
2: हाँ जी मैम।

0: हाँ जी
1: बहुत सारे शब्द है, मौसम है, तुम है, बिन है, दिल है, अब आप बताइए कौन सा
0: नहीं,
1: शब्द है।
0: आपको जिस पे भी चार पांच गीतों के मुखड़े याद आ जाए फटाफट फटाफट,
1: फटाफट फटाफट दिल पे गाल लूंगा, 10 से ज्यादा गाने।
0: ठीक है?
1: दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, दिल विल प्यार व्यार मैं ना।

0: गया जो
1: अगला अगला
0: दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है ये
1: चलिए
0: दिल।
1: 5 गाने हो गए, है ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े ट्रैक राउंड की
0: थैंक यू,
1: तरफ।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आपने
1: अच्छा
0: अपना
1: ठीक
0: कीमती
1: है,
0: समय देश के लिए।
1: ओके, धन्यवाद
0: वेलकम
1: आपका भी
0: वेलकम,
1: फोन करने के लिए। हेलो,
0: धन्यवाद मैम।
1: हेलो, कौन है जो प्रोग्राम

0: उन तक पहुंच नहीं पाए। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: गुड
0: नमस्कार।
1: मॉर्निंग मुंबई। दिनेश कुमार सोनगा सभी को प्रणाम करता है, पूरे एफएम टीम को। सूर्य नगरी शहर, आप तो आपकी नस नस में धड़कता है सुरीला संगीत, एफएम सन सिटी।
0: चलिए बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते
0: गाना
1: मैडम,
0: शुरू,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक, गाना शुरू कर दीजिए।
1: फर्स्ट ये गाना फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ। मस्त महारों का मैं आशिक, में जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। हेलो,
0: हुक्कू, बहुत बढ़िया। चलिए
1: कैसा लगा मैडम?
0: बिल्कुल अच्छे, आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ।

0: हाँ, क्या चुना आपने?
1: दिल
0: ठीक है।
1: दिल ने फिर याद किया, बल्ख सी लहराई है ये दिल, तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू को जानू इतना बस तुझे अपना मानू रे, दिल विल प्यार व्यार।
0: एक और।
1: एक और दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूं मैं
0: चलिए।
1: मुझको बेकरार।

0: कर लो मेरी धड़कनों को समझो।
1: ठीक है मान लिया जी, ये चार हो गए पूरे। और अब ट्रैक पर गाएंगे?
0: हाँ मैडम, एक मेरा फ्रेंड का लेना चाहता हूँ जोधपुर से, मनीष, क्या नाम इनका,
1: जोधपुर में जब रहने वाले लोग हैं तो वो खुद क्यों नहीं फोन करते?
0: उनका फोन लगता ही नहीं, क्या करे?
1: तो फिर आपका कैसे लगता है? सिखा दो ना, अपना दोस्त है तो फिर दोस्तों को सिखा देना चाहिए कि हमारा फोन इस तरह से लगता है, आप ही करें।
0: आपका आदेश का पालन करूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा मैं।
1: हाँ सिखाइए।
0: फिर मुझे एक साल का ब्रेक लेना पड़ेगा।
1: अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों?
0: अच्छा, मैं क्या दिल से लगाता हूँ, हर काम दिल से करता हूँ, जल्दी हो जाता है। प्रकाश, भवनलाल और भगवान दास और जुगल जोर सोनगरा और मेरे बड़े भाई जुगल जोर सोनगरा, मैंने सोनगरा कमल सोनगरा आईकोडो सर्विस करता, सबका नाम ले लिया मैंने।
1: चलिए बढ़िया किया आपने। अब गाना गाएंगे
0: सबसे बेस्ट,
1: के नाम नहीं लेना था?
0: बिल्कुल ले लिया, आप थोड़ा इसमें हेल्प कीजिएगा ट्यून में। हाँ मैम, हेलो।
1: हाँ जी सुनिए, शुरू हो रहा है।

0: दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
1: टूट जाता है
0: ओहो आशा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता जी
1: इसलिए ना सुनकरा जी कभी कभी ना सामने वालों को भी सुनना चाहिए।
0: यस
1: कोई बात नहीं, आपने फोन किया, बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक तब लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत फिल्मी अंताक्षरी के इस अंक में। निमी के संग मैं हूं कविता और हमारे संग कौन है देखे जरा। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी
2: हमारे हुकम भाई साहब। राम राम। निमी भाई नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज करूँ पावटा चौराहे से।
1: हाँ जी कृष्णा राम जी गाना शुरू करें।
2: ये बच्चों पे गाना है जो टूटियां पड़ी हुई ना बच्चों की। काफी पुराना गाना वो गाने की कोशिश करता हूँ। नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा।
1: ये बस मुखड़ा ही गाना होता है कृष्णा राम जी। अंतरे तक नहीं जाते हम लोग है ना। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। ये गाना सुनिए।

0: हाँ जी
1: क्या चुना कृष्णाराम जी?
0: जी
1: ठीक है।
0: गाओ मैडम गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल,
1: अगला।
0: तेरे गीतों में मेरी कहानियां है।
1: एक और
0: मैडम गीत गीत से दो गाने याद आए मैडम
1: बस।
0: बस।
1: गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं।
0: गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं
1: बस अभी भी नहीं,
0: बस।
1: तेरे सुर और मेरी।
0: याद नहीं आ रहा है।
1: तो फिर धन्यवाद फोन करने के लिए किसाराम
0: बहुत
1: जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार।
0: ओम प्रकाश राजू बोलूँ मैं, ओम प्रकाश राजू बोलूँ मैं,
1: जी
0: पता मैं गजरपुर से संजय गांधी गलोनी गलोनी पे तीन से। हाँ
1: ओम प्रकाश जी नाम है आपका?
0: जी ओम
1: जी
0: प्रकाश राजू कौन
1: ठीक है। गाना शुरू करें
0: सा
1: जो भी आपको पसंद हो, फिल्मी गाना।
0: जो भी पसंद जो भी दिल तो पागल।

0: दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, पहले पहली बार मिलाता है ये, सीने में फिर आग लगाता है। हाँ
1: बस आपने पहली बार फोन किया है,
0: है, आज मैंने पहली बार फोन किया।
1: फिल्मी अंताक्षरी में पहली बार फोन किया आपने।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो थोड़ा तसल्ली से सेकंड राउंड का गाना सुनिए, फिर उसमें से एक शब्द चुनिए, और फिर उस शब्द से शुरू होने वाले कम से कम चार गीतों के मुखड़े आपको याद होने चाहिए। चलेगा?
0: अच्छा, हाँ जी मैंने चलेगा।
1: ठीक है, फिर सुनिए।

0: हाँ जी, तो
1: क्या शब्द चुना
0: उसमें
1: आपने?
0: जी मैंने ऐसे सुना है वो नजर।
1: ठीक है,
0: हाँ जी, नजर नजर मेरी नजर, जाए जो चर में देखी जो, मेरी पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बेटा है मेरा जिया। बड़ी बड़ी दो ही गाने याद आएंगे नजर पे।
1: चलिए कोई बात नहीं, आपने दो तो गाए, अगली बार चार भी गाएंगे। फोन करने के लिए
0: शुक्रिया
1: बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया।
0: आपका शुभ नाम।
1: प्रोग्राम सुनिए। हेलो
0: हेलो मैम, रवि
1: जी,
0: राजवास बोल रहा हूँ,
1: हुकुम।
0: जोधपुर चपासी से।
1: जी
0: हेलो,
1: हाँ, गाना शुरू करें।
0: बिल्कुल मैम।

0: करूं।
1: क्या बात, बहुत सुंदर रविराज जी,
0: जी
1: अच्छा गाना चुना, गजल अच्छी चुनी, बहुत ही सुंदर है और आप गाते भी अच्छा है ना।
0: जी
1: इसीलिए सेकंड राउंड की तरफ बढ़ जाते हैं। ये गाना सुनिए, एक शब्द
0: जी
1: चुनिए और चार पांच
0: जी
1: गीतों के जो भी मुखड़े, एक एक लाइन आप जल्दी जल्दी गा पाए गाइएगा।

0: क्या शब्द चुना आपने?
1: ये मैंने शब्द सुना है मेरे,
0: मेरे, ठीक है।
1: मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तेरे मेरे सपने अब एक संग है।

0: घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: इसमें मेरा है।
0: डबल कौन
1: इसमें तो मेरा नहीं आया,
0: सा?
1: इसमें मेरा नहीं आया ना।
0: नहीं, मेरे मेरे।
1: हाँ तो आपने ये तेरे घर के सामने गाया ना,
0: अच्छा,
1: मेरे कहाँ है।
0: तेरे मेरे बीच।
1: हाँ।

बहुत बढ़िया, चलिए चार तो हो गए है ना, इसीलिए हम आगे बढ़ते ट्रैक राउंड की तरफ तालियों के साथ।

इतना अच्छा तो आपने ही गाया है रवि जी. सच में इतना अच्छा और इतने ही खूबसूरती से आपने सारे ही राउंड क्लियर किए, है ना. नेमिका तो हाथ ही दुख गया तालियां बजाते बजाते. तो चलो, आपका आना गुनगुनाना बेहद प्रभावशाली रहा. शुक्रिया.

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग
1: अयुब भाई, यात्रा जो है कबीरनगर से। कैसा
0: जी। अयुब भाई, बहुत स्वागत।
1: हो मैडम?
0: कैसे? बहुत अच्छे।
1: आपकी दुआ है।
0: चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। हमारी दुआएं आप तक पहुंचती रहे बस।
1: हाँ बस,
0: गाना शुरू करें।

जाने कहाँ छुप गया, दुनिया वो ही दुनिया वाले वो ही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। मैं जब दुख पाऊँ तो क्या, आज पछताऊँ तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया।

0: दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बताओ यार, रमैया बताओ यार।
1: बहुत सुंदर। सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, ये गाना प्ले कर रहे हैं आपके लिए निमी।

0: क्या शब्द चुना?
1: आप दे दीजिए मैडम, सब मेरे को क्या दिमाग में नहीं आया शब्द, आप कोई शब्द दे दीजिए।
0: याद ले लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि चार गाने आपको याद होने चाहिए कम से कम।
1: तुझे याद न मेरी आई, तुझे अब किसी से अब क्या कहना,
0: एक
1: याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी,
0: याद तेरी आएगी,
1: आएगी मुझको बड़ा सताएगी,
0: दो
1: याद आ रही है तेरी,
0: तीन
1: याद आ रही के आ जा तेरी याद आई।
0: क्या बात, चार याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम।
1: याद किया दिल ने कहाँ हो तुम,
0: याद
1: याद
0: न जाए
1: तेरी,
0: बीते दिनों की याद, बड़ा मतलब ऐसा शब्द है जिसमें कई
1: हाँ
0: सारे
1: हाँ
0: गाने।
1: ये सही,
0: तो
1: याद
0: चलिए,
1: ना जाए बीते दिनों की। जी
0: आप पहुंच चुके हैं अयुब भाई ट्रैक राउंड की तरफ,
1: मैडम,
0: तो ये ट्रैक सुनिए।

0: चलिए काफी हद तक बहुत सुंदर है ना?
1: जी मैडम।
0: तो आपका आना, फोन करना, गुनगुनाना सभी बेहद अच्छा लगा। शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम, कविता मैम।
0: नमस्कार जी,
1: राजेश बात कर रहा हूँ करौली से मैम।
0: जी राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैम मेरा फोन काफी समय के बाद लगा मैम, क्या मेरे नंबर आपके यहाँ से डिलीट हो गए थे?
0: हमारे यहाँ से
1: जब
0: डिलीट?
1: आपका नंबर निकाले ना, जब मैंने फीड किए दोबारा,
0: अच्छा,
1: काफी समय बाद बात हो रही है मैम
0: जी
1: शायद
0: जी
1: अपने।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है आपने बहुत समय से फोन नहीं किया। सब ठीक है ना बाकी?
1: हाँ
0: तो
1: मैम, सब दया कुशल मैम, आपके आशीर्वाद से।
0: भगवान का आशीर्वाद हमारी शुभकामनाएं। और अब जल्दी से जब फोन लग गया है तो गाना शुरू कर दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल।

0: ओ मेरी शर्मिली।
1: क्या बात, सुरीला, एकदम अच्छा। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और नेमी आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये गाना, इसे सुनेगा और है ना कोई ऐसा शब्द चुनेगा जिस पे चार गाने कम से कम आपको याद हो, है ना?
2: चार गाने
1: एक एक लाइन।
2: हाँ हाँ मैम।

0: क्या
1: हेलो मैम,
0: शब्द चुना आपने?
1: मैडम शराब,
0: हाँ,
1: शराब शराब
0: इस पर चार गाने पता है आपको? क्या
1: है? चार गाने पता है मैम,
0: बात, ठीक है फिर।
1: गाओ मैम।
0: हाँ, गाने में तो गाया जा सकता है, वैसे तो हम

0: है।
1: ठीक है, और
0: और मैडम शराब पर, मैडम दो गाने और याद नहीं आ रहे, थोड़ा हिंट देंगे आप?
1: देखिए, हम तो ऐसी चीज पहले तो चुनते ही नहीं और प्रोत्साहित करते भी नहीं, है ना?
0: हाँ नहीं नहीं सही है,
1: तो
0: चलो मैडम कोई बात नहीं, आपकी बात से ध्यान।
1: वैसे पर्दा है शुरुआत भी इसी तरह होती है।
0: हाँ पर्दा है,
1: नहीं,
0: पर्दा
1: वो
0: है,
1: शब्द आना चाहिए जो आपने चुना है।
0: है? चलो
1: चल
0: मैडम कोई बात नहीं,
1: चले,
0: आपकी
1: कोई
0: बात से
1: बात नहीं।
0: ध्यान।
1: हाँ, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, आइंदा जरूर इंतजार करेंगे आपका। इस बार के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो
0: हेलो,
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार मैम।
1: नाम बताएं अपना।
0: मांगीलाल
1: जी,
0: चेन्नई से।
1: अरे हम तो पहचान गए, बाकी हमारे श्रोताओं के लिए।
0: जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस
1: बहुत अच्छे, आप सुनाइए कैसे हैं?
0: चेन्नई पहुंच गया हूँ, जैसे पहुंचा सोचा आपको याद कर दूं।
1: अरे चेन्नई पहुंच भी गए,
0: बिल्कुल मैम,
1: चलिए
0: काफी
1: सुखपूर्वक,
0: खुश
1: है
0: रहता
1: ना?
0: हूँ।
1: तो अभी तो जोधपुर की याद आ रही होगी आपको, गांव
0: बहुत
1: की याद आ
0: ज्यादा,
1: रही होगी, मतलब, है ना?
0: अभी 2 दिन ही हुए ना तो याद ज्यादा आती है।
1: सही बात है। तो चलिए गाइए फिर कुछ ऐसा।
0: तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है।
1: जी, निश्चित रूप से अपने घर, अपने घर वाले, अपना परिवार, है ना? इस पे तो प्रश्न लगना ही
0: बिल्कुल
1: नहीं चाहिए। तो
0: जी
1: आगे बढ़ते हैं हम सेकंड राउंड की तरफ, ठीक है?
0: जी जी
1: वो सुनिए, एक शब्द चुनिए।

0: जी मैम,
1: कोई ऐसा शब्द आप चुन लीजिए जिस पर आपको दो तीन गीतों की पहली पहली लाइन याद आ जाए।
0: बिल्कुल, लेकिन बहुत कठिन लाइन ही बजा रही आपने।
1: अरे दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, देखो वो से भी कई सारे गाने हैं। पास
0: अच्छा, तुम पास आई
1: ठीक है,
0: क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। दूसरा पास में
1: चाहे रहो दूर।
0: चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, याद नहीं आ रहा ना ठीक से, रहनी नहीं बन
1: चाहे
0: रही।
1: रहो दूर चाहे रहो
0: चाहे रहो
1: पास,
0: पास,
1: सुन लो मगर एक बात, मैं इस गली तो तुम उस गली। नहीं याद?
0: सॉरी मैम, आज सडनली कुछ याद नहीं आ रहा।
1: अच्छा फिर
0: फिर आप बताइए।
1: तेरे
0: आप
1: पास आके मेरा वक्त गुजरे। नहीं?
0: जाता है
1: नहीं?
0: बिल्कुल है, होगा बिल्कुल। आप तो क्या है कि गानों में दुनिया में रहते हैं, तो सडनली आप तो बस उस ट्रैक पे चलने जाते हैं कि सारे गाने आपको याद आते हैं। लेकिन हम जब आपको कॉल करते हैं ना, एक तो कॉल करने पे भी इतना समय हो जाता है कि जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं।
1: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: लेकिन थैंक यू सो मच जो मुझे आपने मुझे इंटरव्यू और प्रोग्राम में शामिल किया।
1: अरे प्रोग्राम में शामिल होना तो आपका हक बनता है, आप इतना अच्छा गाते हैं, और सबसे बड़ी बात इतने दूर रहकर भी आप हमारे प्रोग्राम का टाइम याद रखते हैं, हमें फोन करते हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए, है ना? तो
0: बिल्कुल मैम।
1: आपके
0: अरे
1: इस
0: हाँ,
1: प्यार के
0: एक
1: लिए।
0: एक बात जी, और एक बात ये है कि अगर हम लोग आप बोलते हैं जोधपुर को मिस कर रहे हैं, तो शायद इसलिए नहीं कि हम आपको सुन पा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ नमस्कार बहन जी, बरकत
0: जी, नमस्कार, बहुत स्वागत।
1: का अर्ज करूंगा
0: हाँ जी
1: मैं
0: बरकत
1: घर
0: जी, कैसे,
1: पर।
0: सब ठीक?
1: हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलिए बढ़िया। गाना शुरू करें,
1: हाँ जी,
0: गाना शुरू करें प्लीज।
1: हाँ जी करता हूँ जी। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, न थी तेरी किस्मत के देख मदीना। मुबारक हो तुम सबको।

0: علينا لبيك اللهم لبيك اللهم.
1: चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ, ठीक है?
0: आगे

0: और
1: मायन मायन बोल रहा है तेरे मुंडेर पे कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा।
0: ठीक है, और
1: हमें याद नहीं है, गांधी उठे गए।
0: ठीक है, ट्रैक पे गाएंगे। ट्रैक पे वैसे भी आप नहीं गाते हैं,
1: नहीं आज के
0: तो
1: लिए आप
0: फोन
1: हार
0: आपने किया,
1: गए।
0: बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी।
1: अर्जुन दान बोल रहा हूँ, कर्मवास मानव। धन्यवाद।
0: जी बहुत स्वागत, कैसे? चलिए गाना शुरू कीजिए।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए चुपके से जाए। धन्यवाद।
0: चुपके से आए और चुपके से चला जाए, धन्यवाद, है ना?
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड राउंड की तरफ।
1: आगे सेकंड तक तो बढ़ेगी,
0: ठीक है।
1: जाके ब्रेक लगेगा।

0: तेरा
1: क्या शब्द? ठीक है,
0: तेरा मेरा साथ अब एक रंग है, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने तुरीले सपने,
1: चलिए
0: तेरा जाना।
1: अभी समय यहाँ पर इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की। आपने हमें फोन किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए। और दोस्तों, फिल्मी अंताक्षरी को देते हैं यहीं पर विराम। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी, ये FM सन सिटी है।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम टाइम ने नमस्कार।
2: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टाइम ने नमस्कार।

0: राम राम काकू। अरे काकू।
1: अरे भाई कौन कह।
0: राम राम पके लाकू।
1: हाँ जी जी रहे जी जी रहे भाई।
0: कौन हो
1: वो यो जो मुखोटे हो जो अरे क्या हो गीत रहुनियो बहुत दिया देव नाला दिया पन फसा लेगा बात है। भाई मैं कहूँ है बगू गीपरी मंदरेरा फूल चलूँ
0: बगू गीपरी माय चंटाओ काकू माय चंटाओ।
1: अब भाई मरे टाइ गया प्राण कई भाई है जो गया तावड़े में थोड़ा ध्यान रखो भाई। आलू लागी घर की कम टक्की है जिसको बतायो कैकी हुई हो अब मैं बस की कर करने लगी हूँ गणे क्या तो भाई हाउ रहे हाउ ध्यान रख परम कौन कारी दीरी जी की कारी को नहीं बात है अब मैं कौन करना अंदर था नहीं कहूँ भाई हाउ है जिसको चेते हूँ रो अब तावड़ो है जिसको क्या नहीं दुश्मन काम करे थे मोटियार पड़ा है जो क्या लिया फिरो ये बात को नहीं भाई कह नहीं बचे हैंग
0: बस की नहीं बचे वास्तव में हाथ हाथ मरस मसलो बस
1: आ तो कह नहीं कैडी बात है भाई मैं कि क्यों नहीं को नहीं मार तो मारू नहीं तो कोई कह जे नहीं कोई बोली जे बात आ है
0: खैर काकू।
1: हाँ हम कौ है जो मारी कोई बात तो मानो को देख क्या जू तो
0: मैं बात तो करनी मानो
1: कौन माने एक बात बता के ए पंख पंखे हुए कौन है जो कुंडिया भरे कौन है जो कह नहीं।

0: सुन सुगो दे दाव कह विद है देखने हो कह भाई मैं कहूँ कोई धनी दोरी है जो कोई है कह स्वार्थ है दूध दे जिसे है जो को चरावे पावे हैं करे अन पर जे होटा ठोक बारे काटे मैं ऐडी चीज जानते हैं कुंड मारो काल जो घनो पल कर पे भाई फिक्र करनो
1: बात खरी है काकू
0: रिंद्रोई रो कह नहीं कि भाई जीव जिन्ना और है मारे कौन खेलिया भरे इन कौन है जो कह
1: भरे ना लग रहा नहीं भरे है काकू
0: अरे बढ़िया है भाई हूं तो को हैंग हो चली है तो मैं एक नैनो को जे कोई कुंडियो भर भरोन मेल दो तो कह रही मुट्ठी एक सीढ़ी आवे बोले कह रही बढ़िया कह चुन चुको वैद बाकी कोई धन ले कोई कर दो कोई है जो कह नहीं भाई देखे कई हड़का माते कई है जो कह नहीं कि भाई अड़ा मिनक है कर्म गति भुगतन आला बनी कोई है जो गोटियो पानी पा दो कोई नहीं वे तो जुको वे जो कोई करो ही भाई
1: हाथ पांच अंगलियां वे जो कुशम करो हकर हो चो हकर बात थे बता कहना है ठीक है काकू
0: कहना पड़े मन नाली बात
1: अरे पर क्या रोज कहना पड़े मन नाली बात तो कहीं हम थे लगो ही रोज कह हो तो मान ही क्यों कौन माने
0: माने तो भाई गणा ही माने ये मार तो मैं कह नहीं गणा गया थोड़ा रिया मारे काउंटा हूं तो आप लूर पर के हम बाहर निकलो नहीं आज मन चक्कर आवे आज मारे कायम ही आऊं रुक जान जीव फट पड़ी जा तो हूं तो कहूं जान दर के कोई है जो क्या नहीं के ड्यूटी
1: हां हदी हदी जाओ प्राण हदी हदी पास आ
0: बस बात आए हूं दे तो
1: तावड़े में नहीं जानो
0: नहीं हूं जाऊं जो कौन भाई हूं तो बारी को नीमड़ो छोड़ू को नीमड़े टी बैठो रु पर अटी बलती आऊं रुक जा जे मारे कौन है जो क्या नहीं कि जाप तो करे कोई क्या नहीं वो उगते होरी ने है नमस्कार करे
1: ठंडी मशीन लाई
0: थी
1: गीतड़ो
0: गीतड़ो।

0: मैं ये मार्ग कार जो कल्पन ढोग और एक बात हूँ
1: क्या
0: कह रहा कि करी मार तो मैं उम्र परवाने नहीं था नहीं कि करी उन ढोग काय में आऊँ ढोग इन कंब कंब भी सूटे न हूँ कोई है जो गैर हमसार हूँ जो मार तो जी उड़ो घनो भाई
1: ना और तो हैंगर हाथ वे का को थोर हाथ
0: मारू हम नहीं है भाई ये मारू हम बस
1: तो हम का करना रही
0: है भाई मैं कोई भाई से बात करा दो और की कौन बात वो
1: बात करो
0: हाँ बात करो
1: हाँ घनी करो हेलो
2: हेलो
1: राम राम
2: राम राम कविता भाई
1: हाँ
2: मैं सोन नाम बोलूं
1: के ठाड़ू
2: धनारी कलाऊं बोलूं
1: मैं ओ धनारी कलाऊं
0: कौन बोले
2: सोन नाम भील बोलूं आपको धनारी कलाऊं
0: ओ खिलमा बना जी को
2: मैं खिलमा ले भाई बोलूं साहब
0: खिलमा बना गया देखो दौरा मैं टी टी दौड़ दौड़ हाँ तो सोवान एक तो वह गद का एक वह फद का नेड़ो आज हाउड़ हुन ले एक वह गद का अरे एक वह फद का ना ना
1: वो जज को बे
0: घरू देखो घरू गड़ोन घरू भांगो मत
1: वो वे जज को
0: गद का वाकई कौन हम क्या कर दो भले कर दो भाई राम राम
1: हेलो
0: कौन यार बोलनी हिम्मत ही कौन है राम
2: भाईसा
1: कविता भाईसा हाँ सा राम राम
2: थोबू बोलू हुकम राण सिंह पवार
1: थोबू
0: हाँ थोब
2: बालोत्रा जिला
1: तो
0: भाई ये करो बात थारे राण सिंह मार करनी को नहीं
1: क्या
0: मैं तो मार नहीं करनी मार मन है वो नहीं करूं
1: ए माँ
2: काकू ये नाराज मत ही वो
0: नहीं नाराज हो रहा भाई वो तो
1: एक तो एक तो
0: गिना ही कौन ही मान तो कहीं गिना ही कौन ही
1: एक तो वह फदियो
2: दो प्लेन का तो सीढ़ियों ने मास्टर लगाया
1: लो देखो लगाया
2: मास्टर लगायो
0: यूं
1: हां राण जी
2: सीढ़ियों पर थे बात रोज रोज मुने हैंग अमज में आ
1: गई हां ओ राण जी एक तो वह फदियो
2: फदियो
1: फदियो फदियो एक वह हदियो
2: खटियो खटियो वे बाजरी रो खटियो वे माते हुआ वाला उन्हें के खटलीन के खटियो
0: पूछे कहीं बतावे कहीं
1: मन तो थके हूँ गावे पसेयो
0: अरे भाई थाने पूछियो कहीं बताओ कहीं थे
2: देखो हटियो तो के बाजरू आवे उन हटियो
1: आ हटियो नहीं कियो मैं तो फदियो
2: खटियो तो
1: फ फड़ालो फ फदियो
2: फड़ा वाला
0: सही है सही बस
1: सही हो मैं दे रो फदियो नहीं दे
2: स्कूल
0: जान दूजे सारा सर बता मारे पचेटा दिया मन है ठाए हूँ जानू ना राम जी वाली बात मंदरी है मन ठाए
2: यो हाँ काकू
0: वाह वाह की कौन भाई है मैं
2: मार माले तो रहूँ एक भाने जायोड़ है वो बात करनी साले
0: हाँ करा दो फटोफट भाने जू मामू बात कर ली इन भाने जू करा दी
2: राम राम
0: राम राम राम राम
1: क्या नाम है
2: अमित
0: है
2: अमित अमित
0: अमित कतरी में पड़े भाई आठवीं तो मामा ने आवी एड़ा हाँ फिर का खनायो मामो सेवा किदी नहीं किदी
2: किदी किदी
0: वाह तो मजा करो नाना ने मो हाँ जिंत्री आ रही बाप

0: Don.
1: Junior yet.
0: Dolkim ben ayake.
1: Dolkim kon bas ben ayak.
0: Bo tamakatu.
1: Waki kon ya mitri. Waki ki. Bhanu ayo jiko khalak mulak ne kya diyo bhanu ayo ram ram.
2: Ram ram sir, ram ram kaku ne en kavita ji kumar madam ne en radio sunan wala sagla hetal suroto ne bhai Dinesh padara.
0: दिनेश जी आपने भी घने मान राम राम हुकुम
2: धन्यवाद
1: हुकुम बाबूलाल जी मरेठा साहब ने और भगू भाई ने मंडेरा फूल के दाम अरे भाई उन तो क्या वो क्या नहीं जान अनजान रा जित ही है गिया बन मंडेरा फूल सुनाओ कोटि नमन करम हमें गदकान फदका बताओ
2: गदका तो क्या
1: क्या
2: मतलब
1: गदका करे
0: ठीक है
2: मारवाड़ी भाषा बहुत समृद्ध है
0: ठीक है आगे
2: अर्थ नहीं करे तो हमें हमारे कविता जी बताए मंदिर पथकावे या कोई खींच बीज रोन दे तो उन्नी फट फट फट फट करे बुलबुल उठे
1: वाह तो थे पहले पौड़ी सट गा
2: आशीर्वाद
1: है बीन बीनी छोटा मोटा घर में नहीं है थाली लोटा
2: पिताजी सामर्थ्य नहीं रहे नहीं पन्ना सके घड़ी छोटा मोटा वे पन्नो जो बेटी है पर तालमेल सही नहीं बैठे तो नहीं पन्ना सके तालमेल सही नहीं
1: कै उगुनो जनो जावे है जो कह नहीं आतुनो मैं कहू कह बीन बीन नहीं छोटा मोटा
2: घर में नहीं है थाली लोटा
1: हाँ बात तो आ कह रही इनके उठी ने गया पर नहीं गया पर कहीं
2: नहीं इन्हें मतलब आज सामर्थ्य नहीं है बीन बीन नहीं कहीं छोटा मोटा पर सामर्थ्य नहीं देश वगैरह तो नहीं सामर्थ्य नहीं
1: हाँ वाह वाह क्यों थे थार गड़ो थे थार भांगो कोई मान गा अरे मान का भाई मान का थारू मैं कोई अरे भाई देखे कोई चीज कोई बात कहे बीन बीन नहीं छोटा मोटा घर में नहीं है थाली लोटा नहीं नहीं हूँ हम कहीं बताऊँ तो थाने पूछू ज्ञान अरे भाई फोड़ो पड़ी घर वह नहीं उन्हें कह हाँ ठीक है तुम तीजे पौड़ी में हाको
2: तीजे पौड़ी आ है काको के तुल तुल री चोरी करी
1: हम
2: तुल तुल री चोरी करी यानी कि वो तिल नहीं है तुल है तुल यानी तुल रसी वाला तुल
1: ऐसी
2: मुझे बात केवड़ी है के तुल तुल री चोरी करी लियो कुंभ ने उठाए मेस तो एड़ी करी दियो मेस ने जलाए
1: गर्भ साहब गन बे बहन टीवना ही क्या ही को समझिए ज्योतिषाचार्य खन बे बहन है चौपड़ा ही को
2: राम जी रही
1: रावण राशि तो एक ही काको हाँ एक ही
2: रावण जी रही तुला राशि रावण रही हाँ ठीक ठीक और रावण चोरी करी तुल्लो
1: वही तुला राशि ना तुला राशि हाँ हम तो कौन ही कहते बार खन बे बहन है ही कर भाई जिनी बात है हाजी बात है
0: हकरी बात है
1: हाँ हकरी बात है नहीं तो बस कह नहीं कि दुनिया में कह तो कौन है भाई वो मीठो बाजो नहीं वाह

0: और भाई ये मपताड़ गीत हो मोहब्बत में मैं देखा कि कह नहीं कि टैमरा बाजा है भाई टैम ने नमस्कार है मिश्र भाई पूगा मैं करे
1: हाँ मिश्र भाई रुक फोन आएगो
0: हाँ कह के हूँ थे गदरा पूगो राम राम
2: हेलो
0: हाँ
2: हाँ तो हम पता सुनो मैं काको
0: ओ ओम भाई है देखिए
2: हाँ ठीक है ना
0: ठीक है हम भाई हो थे
2: हाँ गर्मी जोर पड़े गर्मी कम पड़ा बने थोड़ी
0: हाँ कम करा हो कम करा
2: करो
0: मारे हाथ में खटको बात करे
2: आप हाथ में खटको और गई है
0: मारे हाथ में लो हम पौड़ी सुन लो
2: हाँ पौड़ी से चढ़ाओ तो चढ़ाओ पौड़ी हो
0: एक तो वह खुड़को और एक वह बुड़को
2: एक वह खुड़को एक वह
0: बुड़को
2: बुड़को
0: डाको
2: अरे दौड़ बत्ती है
0: वाह की कौन वो मुझे हम तो बड़े कर जाओ मोर कुली वो
1: है वो काकू
0: हाँ
1: पकाल भरपरी ने थे उड़ीं बैं जाओ ऊपर एं पस्से जो को
0: हाँ उठो को पकालो है जो उंदा तू कौनी वाह तो ठीक राम राम
2: राम राम काकू राम राम
0: कौन बोलो
2: बुंदू का बोलो
0: ओ बुंदू खान डेलीवर
2: भाई सर राम राम
1: राम राम सर राम राम
0: बुंदू खान क्या अंबारी पेटियां लाए हो पेटियां लाया है जगह एक दिन उठो बाजा भाई हूँ खनु निकली हो जगह कौन है जगह खुशबू आई भाई आ तो हूँ
1: क्या खुशबू आई हमारी के अरे
0: डाने डाने रे खनु निकली हो ए पर उठो लयान भर कौन कहे गुजरात
2: अंतर
0: अंतर को लयान कटे अंतर
1: आंबा
0: आंबा
2: तो आंबा तो क्या आओ तो खबाड़ों का आओ तो ढोनी आओ कौन थे
0: तो ढोनी थोड़े घने
2: निकलो आओ कौन इन
1: मुंगा पड़े ढोनी आ नंबर खाना कौन कहाँ को
0: हाँ बात है
1: लू लाग जा बायरो लाग जा
0: लो हम पाउडी से ना हाँ सदा दो कोई वो कहे हो नहीं एक तो एक खुड़को और एक बुड़को
2: खुड़को तो क्या घरों गेट कोई आड़ो बना आड़ो वह उन्हें क्या खुड़को या कोई खेत रे कदी छोटो मोटो वे उन्हें क्या खुड़को फेरी वे उन्हें दूजो वे भुड़को कोई माटी रो बने वे भुड़को हौकड़ा मुंडा वालो
1: पानी पीवा रहे ना सही
0: खुड़को भाई कोई कोई चीज ऊपर है जिसको क्या नहीं
1: खड़बड़ाट वे बहुत भी खुड़को हाँ, जे
2: अनुतय करनी
0: हाँ बस थार गरु की करते करते ठीक नहीं

0: Monsieur Paulier.
1: Gado.
0: Dublan doka.
2: Dublan e doka gana.
1: Dublan e doka gana.
0: Dublan doka medita gana thoda koke.
2: Oh, ek hi baat hai ne kaku, ke thoda ha gayi hai. हाँ तकलीफ में तकलीफ बात आ गई
0: हमने चीजें पाउडी आऊं दो
1: हाँ
0: क्या दो भला कहीं
1: ये कौन मैं हूँ ना बता
0: मैं तो कौन चीजें पाउडी धाने चट ना आड़ी का आगनी है
1: मैं तो डाइन उल्टा
0: उल्टा कहीं कभी हरी बात हुई या
1: कहीं
0: कौन कौन आदि कौन कौन बते हूँ तोड़ी क्या मैं आजकल क्या उन्ना लगे
1: क्या नाला क्या
0: यहाँ आदि आको थे
1: बाबू मैं आज आदि नहीं आकू हम कले आकू
0: यूँ
1: आकू भी तो मैं आज नहीं आकू
0: तो ओवा नहीं आको उसके इन्हीं में आज आ कोई बात हुई जरा भी होगी कि हूँ आकू ही
2: नहीं
0: है ओ मन रे ओवा भाई हम टरगड़ा रोके आ बात है खैर की कौन भाई आर मंदरी बात है तो अपन कौन करनो
2: हाँ, सही
0: है? बात सही अपन की करनो कौन तो भाई अपन की क्या दाग थे को मारे कहना करो कोई को करे नहीं भाई
2: ना कोई के नहीं कहना नहीं करे करे जो आप मन करे
0: का बात है सही है आ बात हसी है भाई आ बात हसी है सालों की कौन है जो मैं साल ही भाई और तो कहीं

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
5: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: अबार आप सुन रहे हो कार्यक्रम तेमने नमस्कार।
3: वाह भाई वाह, संदेश जोर हुनाया और संदेश क्या नहीं, बात मोटी है। जनगणना वे, घर गणना वे, डंडा गणना होई, हैंग होई, जो पाछे सरकार कहीं है कोई चीज,
4: कोई योजना बनाओ, हाँ, काम तो, करनी चाहे तो ध्यान रहे।
3: ये मैं जो को कह नहीं कि भाई भागीदारी रखनी हो। राम राम, हाँ राम राम भाई, राम राम। कौन बोलो?
5: मैं अभय सिंह,
3: पशुपत रहूं। पशुपत रहूं,
4: अभय सिंह जी।
3: अभय सिंह,
4: स्वागत है।
3: किस दिन पढ़ो भाई?
5: मैं आठवीं क्लास में।
3: खमा गणी है भाईओ, मारे दैन गणी,
4: खमा गणी।
3: हमें पौड़ी है सुनो
4: तो दैन हैण दो शब्द है पर मारवाड़ा। एक तो वे दैन, एक है सैन। दैन दैन हैण,
5: दैन
3: हैण। अभय सिंह बता दे, कोई भाई इनको घर को है जो कोई क्या कौन दैन घनी है मैं
5: दैन
3: तो कह जाए कि घर में भी पड़ोसी सैन। हाँ
5: पड़ोसी दूजा है वैसे दैन घर में वैसे दैन उन्हें किया करें।
3: हाँ घर में दैन वैसे वाकई कौन घर में ही वैसे बाल तम कट वैसे वाह भाई देखो आज तुम पढ़ना अभय सिंह तो भाई देखो मान सम्मान तो रखना पड़ी।
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: बैन वे भाई कोई झगड़ो टंटो वे न कह नी।
5: हां
3: अम्मी हूं
4: कचिया करे जन माए कह न देन मत दे रे।
3: है
4: न
5: ताको आदी पूछो
3: आदी कौन पहला है
4: आदी पूछे।
3: हां पूछो पूछो कौन हो यो?
5: हाथ
3: बीसी
5: किले के
3: हाथ बीसी 140 के 140 हाथ बीसी के और कहीं
4: हाथ वार बीस गिनो हाथ बीसी।
3: हाँ
5: पत्थर खुर के भी आई हूँ हाथ बीसी बीसी आए मैं आवे तो मरे जो न बावन आए तो उड़े जो इन्हें मतलब कर
3: है।
5: हाँ
3: कल है हाथ बीसी बीसी आलाई
5: बाकर खुर्चे भी आयु मतलब की बाकरोड़े बाटोर में भी आयु
3: हाथ
5: विसी बिसी आए मतलब की एक बीसी का
3: 20 रुपया
5: तो मरे जो वावड़ आवे तो उड़े जो वावड़ मतलब की आंधी तूफान आवे तो उड़े जो
3: मैं आवे तो मर जाऊं तो कहीं वे
5: बाकर नीचे बड़े बैठी रहे बाटोरे में जो जगह भी करे
3: बैठी रहे उठ हम क्यों जिन्ना और
4: बटोरी कौन बटोरी ने ते तवे को
3: ना बटोरी को ने
4: तो को कन उत्तर को अबे सिंह जी
5: आ
4: उत्तर बताओ भाई
5: इनो
4: इनो आडी रो
3: इनो उत्तर वही को वही को वाह वाह कई भाई देखे के आज हिम्मत तो करी नहीं कोई आप ही कह माइड भाषा में कोई बोली में इतनी गहरी बात करनी और एक बहुत बढ़िया आउनाल टाइम में हुगन सोका है कोई
4: बैठा था
3: हाँ वही कहा राम राम।

0: सलामत रखे तीजे पावड़ी है, मैं आऊंगा आड़ी
1: आड़ी है काकू, नाड़ी में पाड़ी सरे,
0: नाड़ी में
1: पाड़ी सरे,
0: हाँ
1: सरे सिपल का कौन आता हूँ मोटिक का पड़े मिन करा काम
0: तो नाड़ी में पाड़ी सरे
1: सरे सिपल का कौन
0: सरे पीपल का पान
1: हाँ
0: हाँ मिन करा कहीं हो
1: आता हूँ मोटिक का
0: आता मु टिपका पड़े
1: पानी टिपका पड़े एमिन करा काम
0: एमिन करा काम बात घनी गहरी कह दी बरकत खान जी बरकत वे थारे कौ वे हो
1: सब मैं गया कदे बाहर गौड़िया में
0: सब बात तो
2: सब हम जाओ पण एड़ा को करन को
0: देख लिया भाई देख लिया नाम नहीं लेना नाम नहीं लेना बहुत शुक्रिया नाम नहीं लेना भाई ओ एड़ा काम करे क्यों करे है अंठा नहीं भाई मन तो ओ कहीं भाई
2: गीत
0: गीत होना तो भाई मगज है जो कह नहीं ठंड हो जा
3: इस जमाने में

0: जाने क्यों लोग डोडा पिया करते हैं, डोडा पिया गोडा बीजे मातो गाल बजे रोए घरा टावरिया रुड़े एट पेट खराब वे ओ गीत रो मनी दाय आयो भाई ये फज कह नहीं के भुगतना भुगती है राम राम
1: राम
0: राम राम राम राम
1: राम
0: राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
2: राम राम राम राम राम
0: राम राम राम राम राम
2: राम
0: राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
2: राम राम राम राम राम पावडी साडनारो दो शब्द है रामेश्वरी जी।
1: हाँ बताओ जी।
2: एक तो वे है चूपा।
1: हाँ।
2: कहीं वे?
1: चूपा।
2: हाँ।
1: चूपा तो पानी चूपे तो क्या चूपा वो दांत में लगावे होना ही चूपा।
2: हाँ दांत में लगावे जी की चूपा ने चोपा।
1: चोपा।
2: हम्म।
1: चोपा तो
2: कोई आ करे कोई लाग जगह तो बच्चों को ही देवा लगवा। हम्म, बिल्कुल ठीक। कोई दवाई रे फूंबे रो के कोई गीले गाबे रो। हाँ, बिल्कुल ठीक। हम कहता हूँ सदाबाई सांवलान कोई ले रो बेपार।
0: जलेबी
2: खा लो। इन्हें उत्तर है जलेबी।
1: जरा बका को।

0: तो वह तो काम करो, नहीं वह देखो भाई आप
1: आराम करो,
0: आराम करो और पंख पंखे रू जीव जिन्ना है जो की सेवा करो तो है बात भली होई। और भाई ये हूँ थोड़ो कह नहीं का आज बड़े कोई मत तो करियो हूँ जो मन ही आपने कटी कोई भाई जनो मिलनो है वहां से थे कह नहीं के हवल जाप तो राखो
1: हाँ।
0: राउन नाला है हमार मारू मिल नाला है
1: अच्छा।
0: जो आप जल के आली चाह है बार है तैयार करो
1: बिल्कुल
0: जीरा दूजा नेग नुकान बढ़िया ठाडी सेवा करो
1: गणी करो।
0: और भाई ये मुझे कह के
1: ठीक है
0: होगो टाइम
1: हाँ टाइम तो
0: हुआ टाइम होगो तो राम राम राम
1: राम, राम, राम, राम।
2: तो ऐसा ओहो कार्यक्रम टाइम ने नमस्कार।

हाँ भाई ये बात कह नहीं अरिजीत सिंह गीत ठीक होना यो हम जानी तरस ना मो मायामी हज को हज कह नहीं फिरता फिरो पर तावड़े में बारे मत निकलो ठाड़ी चीजा जी मो ठाड़े अच्छी हम बैठा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टैम ने नमस्कार, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि

0: उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। अब से लगाकर दिन में 1:15 तक आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के अंदर से रिले होने वाले कार्यक्रम।

दोस्तों आज ये सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में. तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए. खुद्दार फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: முத்துத்தோடு சோரிகளா. ஐயோடா அம்மன் முத்துத்தோடு சோவாரிகளா.
1: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती. इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता. और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर. लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम. आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई. प्रवेश बिल्कुल मुफ्त. आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए.
2: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान स्वानंद किरकिरे नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें स्वानंद किरकिरे के बोल संगीत अमित त्रिवेदी का.

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: जरा सा आ जरा सा सीधो ओ जालिमा मर
1: जियो। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
0: मैं उठते हिलो अरे पुरवा के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द

शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सके तो जरूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी, बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को

0: याद दिलाया करती है. इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस. बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है. उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे. एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है. वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है. उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है. ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो. इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है. जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है. लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है. बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है. तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं. इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है. लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं. चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं. आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है. आर डी बर्मन का संगीत है. संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है.
1: अरे ए,

0: सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही साथ FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम नारी वाटिका।

0: लकीरें अपनी किस्मत की खुद ही बनानी पड़ती है, चरागों की तरह रातें जागनी पड़ती है।
1: बैठे बिठाए नहीं मिलती मंजिल किसी को, कश्तियों को भी लहरों से बाजी लगानी पड़ती है।
0: नारीवाटी का सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: समीना का प्यार भरा नमस्कार।
0: आज आज के पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना की है सफलता चारण ने।

0: समीना, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो रास्ते में एक ज्योतिष बैठे थे। कई लोग हाथ फैलाए पूछ रहे थे, बाबा तकदीर में सरकारी नौकरी है या नहीं, बाबा क्या अमीर बनना लिखा है या नहीं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो हमारी तकदीर है, ये ऊपर से एकदम फाइनल प्रिंट होकर आती है या फिर इसे हम रोज सुबह उठकर अपने हाथों से लिखते हैं।
1: सच कहा तुमने कि फाइनल प्रिंट होकर आती है या नहीं आती है ना। सच बताऊं तो इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए जिंदगी एक जिंदगी है, अभी इस तरह से है कि कार का मॉडल है ना, तो रास्ता कैसा है, पथरीला है, हाईवे है, ये सब तो शायद उस कार को देखने से पता चलेगा या तकदीर ने तय कर दिया है ना, लेकिन उस कार को चलाना कैसा है, गड्ढों से बचाना

0: ना कैसा है ना, स्टेयरिंग व्हील को किस तरफ मोड़ना है, ये पूरी तरह से आपका कर्म तय करता है। अगर हम सब कुछ तकदीर पर छोड़ दें और फिर बात वैसी ही हो जाएगी कि एग्जाम की तैयारी तो कुछ नहीं की पर भगवान जी पास करा देना, ऐसे तो नहीं चलता है ना।
1: इसलिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हाथों की लकीरों पर मत जा ए गालिब, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते।
0: क्या बात है, भगवान ने हमें एक कोरा कागज दिया और कर्म की कलम दी है, और अब आपके ऊपर है कि आप उसे पर अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं या सिर्फ बहानों की लिस्ट। आपको इस बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते ये सब कुछ आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। आप तकदीर को मानते हैं या सिर्फ हाथों की बनी बनाई लकीरों को, ये सोचना आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: और समीना, जब हम रेखाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल हाथ की लकीरें नहीं बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, हमारे जीवन में रिश्तों का ताना बाना है, संघर्ष है, उम्मीदें हैं और अनुभवों की भी वो बहुत सारी लकीरें हैं जो परिवार के अंदर, परिवार के लोग और विशेष रूप से महिला के व्यक्तित्व को गढ़ती है।
0: बिल्कुल, जब हम रेखाओं या लकीरों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ हाथों की लकीरों पर या हाथों की रेखाओं पर चला जाता है। लोग कहते हैं कि इन लकीरों में किस्मत लिखी होती है, लेकिन आज जब हम नारी वाटिका में इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो हाथों की लकीरों की ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी उन अदृश्य रेखाओं की भी बात करेंगे जिन्होंने एक महिला या एक व्यक्तित्व को गढ़ा है।
1: बिल्कुल, परिवार के अंदर एक महिला अपनी मेहनत से या परिवार के बाकी भी जो सदस्य हैं, यूथ है, वो अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने जज्बातों से हर रोज खुद को लिखते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन को कर्म रूपी लकीर से मांझते रहते हैं और वो रेखाएं बनती है, बिगड़ती है, फिर नई बनती है। कभी चौके चूल्हे से शुरू होकर आसमान तक वो रेखाएं जाती है और कभी अपनों की खुशियों को समेटते हुए एक खूबसूरत दायरा बनाती है।
0: हाँ, तो चलिए आज मिलकर टटोलते हैं जिंदगी के इन्हीं रंगों को
1: कि हाथों की लकीरें बड़ी, तदबीर बड़ी या तकदीर बड़ी।
0: बिल्कुल।

0: हथेलियों की लकीरों में छुपा एक जहान है, कभी ये ममता की छांव तो कभी ऊंची उड़ान है।
1: मत आंकना इन्हें कमजोर, सिर्फ कंगन देखकर यही हाथ इस बदलते दौर की असली पहचान है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये जो पहचान है, ये जो लकीरें हैं, ये हमारी पहचान बनती है, महिला के हाथों की वो लकीरें जो कि इनको संवारने, परिवार को संवारने में घिसती है, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भरता की नई इबारत भी लिखती है। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो या बाहर का काम, ये रेखाएं थकान नहीं बल्कि ताकत की प्रतीक होती है।
1: और दायरे और मर्यादा की रेखा की बात करें तो समाज में अक्सर महिलाओं के लिए कुछ रेखाएं खींच दी जाती है, लेकिन आज की महिला उन रेखाओं को लांघती नहीं है बल्कि मर्यादा में रहकर अपने सपनों को एक ऐसा नया सर्कल देती है जिसमें उसका पूरा परिवार, उसके अपने सपने दोनों ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रहते हैं।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में जब हम लकीरों की बात करते हैं तो रिश्तों की डोर भी है वो एक लकीरों की तरह से बंधी होती है। एक औरत माँ, बेटी, बहन, पत्नी और दोस्त के रूप में जितने रिश्तों को जोड़ती है ना, वे जीवन की सबसे खूबसूरत रेखाएं बन जाती हैं।
1: और अक्सर देखो समीना, ये भी कहा जाता है विधाता ने जो लकीरें खींच दी हैं वो बदलती तो नहीं, पर सच तो ये है कि जब एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करती है, जब एक बेटी अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करती है, तो वो अपनी तकदीर की लकीरों को खुद एक नया मोड़ दे रही होती है। और देखो हमारी वाटिका की आज की खिली हुई धूप यही संदेश देती है कि जो कर्म करें और आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएं, और लकीरों के भरोसे बैठने की बजाय है कि हम अपने कर्मों की नई लकीरें खींचते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हौसलों के आगे तो तकदीर भी सर झुकाती है। कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत हो तो हाथों की लकीरों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। और

किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है कि इन हथेलियों की लकीरों में छुपा एक जहान है। सच ही तो है, आज की जो नारी वाटिका है या हम जिन रेखाओं की आज बात कर रहे हैं, जीवन की रेखाओं की, वो सिर्फ एक औरत की हथेली तक सीमित नहीं रहती, उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ नया जहान बनाती है।

0: हो तैयार ये जग है रण तेरा, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी राजस्थानी में भी कहा जाता है कि कर्म री रेखा कट्टी कोनी पन कर्म सुभाग जरूर बदले, यानी कि कर्म की रेखाएं जो लिखी है ना वो अपनी जगह है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्मों और मेहनत से अपना भाग्य जरूर बदलता है। तो इसलिए हमें निरंतर अपने कर्मों पे फोकस करते रहना चाहिए, क्यों आशा जी क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे व्यूज हमारी सखियों ने भी भेजे हैं। मधु बनर्जी लिखती हैं तकदीर बड़ी या तदबीर बड़ी के बारे में कि मैंने अंक ज्योतिष के ज्ञाता कीरो को काफी पढ़ा है और कीरो की दृष्टि से देखें तो उनका ज्योतिष कहता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके विचारों के अनुरूप बदलती रहती है।

0: बिल्कुल सही कहा, और इसके आगे वो लिखती हैं कि इसलिए आप क्या विचार करते हैं इसका बहुत महत्व है। किस्मत को तो हमारे जो सद्विचार होते हैं या सत्कर्म मिलकर के बदलने की ताकत रखते हैं।
1: यानी कि अच्छा सोचते रहें, आप अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और आपके कर्म में आ जाएगा, तो आपके विचार बदलेंगे तो आपके कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से हंसा विश्नोई लिखती हैं कि मेहनत और किस्मत में से मेहनत पर ज्यादा विश्वास करती हूँ।
1: अच्छा,
0: किस्मत में क्या लिखा है यह हमें पता नहीं, लेकिन मेहनत के बल पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस्मत में भी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं।
1: और ये आगे लिखती हैं कि ऐसा माना जाता है किस्मत हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रतिफल है, और किस्मत कोई ईश्वरीय प्रदत्त भेंट या उपहार नहीं है। जन्म के समय जो किस्मत हम लाए हैं उसमें हम इस जन्म के कर्मों के द्वारा उसको बढ़ाते हैं या उसमें कमी कर सकते हैं। और आगे ये लिखती हैं कि किस्मत से हम अच्छे अवसर या सकारात्मक परिस्थितियाँ हम अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग हम हमारे कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं। हमें भोजन भाग्य से मिल सकता है, लेकिन भोजन करना भी तो एक कर्म है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखती हैं। और इसी के आधार पर, इसी के साथ साथ में वो लिखती हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। आज का परिश्रम ही हमारे भविष्य की आधारशिला है, और उपलब्ध साधन और परिस्थितियों का उपयोग हम सकारात्मक दृष्टिकोण से और उचित दिशा में करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है कि जो चीजें हमें आज प्राप्त है उनका उपयोग हमें ऐसा करना है कि वो भविष्य के लिए भी बची रह सके, तभी हम अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे, हम अपनी तकदीर तो बदलेंगे साथ में दूसरों की तकदीर भी बदल सकते हैं।
1: और एक और व्यू भेजा है वंदना शर्मा ने, वो सोचती हैं कि न तकदीर बड़ी है न तदबीर बड़ी है, असल में तदबीर ही तकदीर की ड्राफ्टिंग करती है ना। यानी कि हम मेहनत करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हमारे अंदर लगन है, तो वो ही फिर तकदीर की ड्राफ्टिंग करती है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे कर्म हमारे साथ जरूर चलते हैं। अगर हमने हमेशा सबका दिल दुखाया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, यानी हमेशा स्वार्थी बने रहे, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम एक नंबर से ही सही हमारी जो मेहनत के हिसाब से फल मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल, इसी के साथ में हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे आड़े जरूर आते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तो हम अपने कर्म कुछ इस तरीके से करें कि हमारे कर्मों से दूसरों को भी फायदा मिले, और हमारी तो तकदीर संवरे ही, साथ ही साथ में हमारे जो साथ में है, हमारे अपने हैं, उनकी तकदीर भी बदल जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि खुद पर भरोसा है तो हम जो है अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, और यही हमारा अगला गीत भी कह रहा है।

0: समीना, जब हमारी कभी सुबह आंख खुलती है तो हम सभी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये भी पालूं, वो भी पालूं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से 100% मेहनत की है पर नतीजा शून्य रहा?
1: ऐसा अक्सर होता है कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बिल्कुल भी मेहनत की नहीं होती है ना अच्छा, हमें पता ही नहीं होता है, हम बिल्कुल बेफिक्र बैठे होते हैं, तभी अचानक से हमारी जो झोली में है वो खुशियाँ आ जाती है जिनके लिए हमने मेहनत नहीं की थी। तब मन कहता है कि कोई तो ताकत है जो ऊपर बैठ कर हमारा रिमोट कंट्रोल जो है उसको संभाले हुए, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं।
0: और इस बात को तो सदियों पहले संत कबीरदास जी ने लिख दिया, कितने सीधे शब्दों में कह दिया था, गौर से सुनिएगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए।
1: हाँ, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी तसल्ली है। एक लाइन में कबीर जी कह रहे हैं कि जो होना तय नहीं है वह कभी होगा नहीं, और जो होना भाग्य में लिखा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है ना, कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। फिर हम इंसान बेकार की चिंताओं में क्यों घिरे रहते हैं? और ये कहते हैं कि कबीर दास जी तो ये कहते ही हैं, इसके साथ ही साथ तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि रामचरितमानस में कि किस
0: पहले
1: तरह से
0: पहले बना प्रालब्ध पाछे भयो शरीर, तुलसी ये अचरज भये मन ने बांधे धीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर।
1: सोचिए, हमारा शरीर मांस मज्जा का पुतला तो बाद में वजूद में आता है, विधाता हमारी किस्मत का पूरा चैप्टर पहले ही खुद से लिख देता है। जब विधाता ने आने का, पाने का और खोने का समय पहले ही तय कर दिया है, तो फिर इस छोटे से दिल पर इतनी चिंता का बोझ क्यों रखते हैं हम लोग?
0: सब कुछ उस पर ऊपर वाले पर छोड़कर खुद को शांत क्यों नहीं कर लेते? सच ही तो है सखियों, भाग्य के आगे बड़े बड़े राजा और ज्ञानी भी नतमस्तक हुए हैं। जो किस्मत में है वो सात समंदर पार से भी दौड़कर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। तो अहंकार छोड़िए, फिक्र छोड़िए और उस विधाता के लिखे विधान पर भरोसा करिए।
1: हाँ, क्योंकि हम उसी के बंदे हैं और उसी की दुनिया जो बनाई हुई है उसमें हम चल रहे हैं।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समीना जी, हम बात कर रहे हैं भाग्य की या हाथों की लकीरों की, यानी तदबीर या तकदीर क्या बड़ा है। तो अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, यूथ की बात करें, तो
1: तो
0: एक
1: उनमें
0: तरफ
1: जिगरा है
0: बिल्कुल उनमें
1: बिल्कुल
0: जिगरा है। और देखो, आज की जनरेशन एक अजीब दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो हमारी जो रील्स के फीड पर हसल कल्चर छाया है, काम करो, ब्रेक डाउन लो, फिर काम करो, और दूसरी तरफ ट्रेंड चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, यानी जो किस्मत में है वो यूनिवर्स खुद ला कर देगा। तो भाई, आज का युवा असल में क्या सोच रहा है, कर्म या भाग्य? तो जब बात करते हैं युवाओं से, तो क्या कहते हैं युवा?
1: हाँ, तो युवा उनसे अगर हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कर्म को मानते हो या किस्मत को, तो वो यही कहते हैं कि भाई सीधी सी बात ये है कि नो इनपुट्स नो आउटपुट्स, है ना। आजकल की युवा पीढ़ी कर्म पर भरोसा करती है। हम रात रात भर जाग करके, जो हमारे युवा हैं वो कोडिंग करते हैं, स्किल सीखते हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो प्लान करते हैं, और अगर वो बैठ जाए ना तो भाग्य में होगा, मिल जाएगा, ये सोच करके, तो भाई ऑर्डर भी डिलीवर होने में टाइम लेता है ना। तो नौकरी तो दूसरी बात है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, या जो वो सोच रहे हैं, जो उनके जीवन का लक्ष्य है, उनको पाने के लिए उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी।
0: और कर्म ही सब कुछ है, कई यूथ तो ये मानते हैं, लेकिन आज का यूथ सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने में यकीन नहीं रखता। इसे भाग्यवाद का नया रूप कह सकते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्स की टाइमिंग कहते हैं। कई बार 100% देते हैं, शत प्रतिशत देते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तब हमें समझ आता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत है जो काम कर रही होती है। आज का युवा भाग्य के भरोसे बैठकर आलसी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल, ये बात तुमने सही कही कि जो आज का युवा है वो भाग्य के भरोसे बैठ कर के आलसी नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है ना। तो आज का युवा ये कहता है कि जो है सिर्फ सोचने से या विश बोर्ड बनाने से सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म के बिना भाग्य का पहिया घूमता नहीं है, फिर बैलेंस कैसे बिठाना ये हमारे ऊपर है। तो युवा पीढ़ी जो है वो इन दोनों के बीच में संतुलन भी बना करके रखती है। तो कर्म कैसे हैं ये हमारी तैयारी है ना, और भाग्य को मानना हमारी स्वीकार्यता है। अगर कुछ हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेल हो गए, शायद यूनिवर्स के पास हमारे लिए उससे बेहतर कुछ और प्लान है।
0: इसलिए कहा जाता है आज का यूथ जो सोच रहा है, अपने तरीके से जी रहा है, अपने तरीके से सोच रहा है, वो हर कर्म पूरी शिद्दत से करता है, लेकिन फल के मामले में वो डिटैच हो जाता है। तो कितनी ये बात खूबसूरत है कि आज की युवा पीढ़ी की सोच पुराने वाली लकीर की फकीर नहीं है। आज का युवा तो ना अंधविश्वासी है और ना भाग्यवाद से बंधा है, और ना ही वो पागलों की तरह सिर्फ दौड़ना चाहता है। आज के यूथ के पास एक नया मंत्र है, मेहनत अर्जुन जैसी करो और परिणाम को कृष्ण पर छोड़ दो, यानी यूनिवर्स पर छोड़ दो। कर्म आपका पावर हाउस है और भाग्य पर भरोसा करना आपका स्ट्रेस बस्टर। तो दोनों का जो कॉम्बो है वही आज की जनरेशन को कूल और मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे घर में भी कोई यूथ है और वो अपने भाग्य को मानते हैं, तो हम इस प्रोग्राम से के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कर्म और भाग्य का बैलेंस रखना सीखिए, तो आप किसी भी तरह के तनाव या डिप्रेशन में नहीं है। आज हम यूथ को देखते हैं जो अपने कर्म पर भी विश्वास करते हैं और उसके साथ में वो इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद में भी अगर उनको फेलियर मिलता है या वो कहीं रुक जाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, है ना, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हैं, और फिर वो उसके जो परिणाम है उसको ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, यानी तकदीर के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं या कहीं ठहर जाते हैं। और इसी तरह से हम एक बात और भी करेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: आशा, हम बात कर रहे हैं भाग्य या किस्मत या फिर हमारी जो मेहनत है कौन ज़्यादा बड़ा है. तो कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल हमें उसी समय हाथों हाथ तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजर्व करके रख दिया जाता है. मैं अभी कुछ दिनों पहले है ना एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि एक जो सोशल मीडिया पर जो है रील्स बनाने वाला एक जो कॉमेडियन था, उसने कुछ एक एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया, और उसमें वो एक नंबर से पीछे रह गया. जो मेरिट और कट ऑफ जो गई ना उसमें वो एक नंबर से पीछे छूट गया.
1: अच्छा.
0: और फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था और उसको रील्स वगैरह बनाने का शौक ही था, तो उसने कहा मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली है, अब शायद मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा हुआ था इसलिए एक नंबर से मैं पीछे रह गया. और वो फिर रील्स वगैरह बनाने लगा तो सब घर परिवार के लोग, बाहर के लोग ताने मारने लगे, कहने लगे और मेहनत करनी चाहिए ये सब. लेकिन उसका जो मन कर रहा था, यानी मन का जो सिकंदर वो था, उसके मन में कहीं तसल्ली थी. और फिर यही हुआ एक लंबे समय के बाद में, मतलब 8-9 महीने के बाद में, जब उसने जिस कंपटीशन एग्जाम का दिया था उसका रिवाइज रिजल्ट आया.
1: अच्छा.
0: और कट ऑफ जो है वो एक नंबर पीछे आ गई. यानी उसका सिलेक्शन हो गया और फिर वो एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट पर आज वो अपने काम कर रहा है. तो यानी उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि आपकी मेहनत से बड़ा जो है वो भाग्य भी होता है. अगर भाग्य में लिखा होता है तो आपका वो टल के कहीं पे भी नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर.
1: आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ. और देखो ना, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहाँ हमारी सारी समझ, हमारा सारा विज्ञान और हमारा सारा पैसा घुटने टेक देता है. हम जिंदगी की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन सच ये भी है कि लिखने वाले ने हमारी तकदीर में कुछ और ही लिखा होता है. तभी तो कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता. और देखो, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों कि भयंकर एक्सीडेंट हुआ. हाँ. गाड़ी का और पर खच्चे उड़ गए गाड़ी के और 3-4 लोग मतलब जो गाड़ी के अंदर बैठे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. लेकिन उसमें से एक ऐसा शख्स निकला जिसको खरोच तक नहीं आई. तो इनका डॉक्टरों इस बात का डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है. तो ये सारी बातें ऊपर वाले के हाथ में हैं. जब तक उसका हाथ आपके सिर पर है तब आपको मौत भी आती है तो वो दूर से ही गुजर जाती है,
0: छू करके गुजर जाती है. बिल्कुल यही सा कहा. और बहुत से लोग हैं जिनको अचानक से एक दिन सुबह उठते हैं लॉटरी लग जाती है, कुछ अचानक ऐसी चीजें, सिर्फ पैसा ही नहीं कुछ ऐसी चीजें भी उनको मिल जाती है जो उनके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है. किसी उस अकेले से पूछिए ना जो अकेला बैठा है या एकांत में रहता है या बहुत परेशान है, जिसकी बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, उस व्यक्ति के पास में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है और वो उसकी बातें सुन लेता है, उसके पास में 2 पल गुजारता है, तो वो भी उसके लिए एक तकदीर बनाने वाला पल होता है. तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हमें अचानक से मिलती हैं और वो हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई होती है.
1: बिल्कुल. हम इंसान तो सिर्फ मोहरे हैं, असली बिसात तो ऊपर वाले ने बिछाई है. हमारा कर्म हाथ में है लेकिन हमारा भाग्य उस विधाता के हाथ में. इसलिए जो पल आज हमारे पास है उसे खुलकर जिए और नाराजगी छोड़े और मुस्कुराते रहे, कर्म करते रहे.

0: तो जब हम बात करते हैं तकदीर और तदबीर की, तो आज की जो नारी है वो आधुनिक है और जागरूक भी है, और जो अपने फैसले की लकीर खुद खींच रही है। अब वो किसी और के लिखे मुकद्दर की मोहताज नहीं है, अपनी ही उड़ान का वो एक नया आगाज है।
1: हथेली पर भले ही धुंधली हो किस्मत की लकीरें, मगर बुलंद हौसलों का एक मुकम्मल साज है वो। बिल्कुल, तो ऐसे ही जज्बात और एहसासों के साथ में हमारे जीवन की रेखाएं भी जुड़ी होती है। और आशा, एक और रेखा होती है जिसके बारे में हम आज की आधुनिक नारियां जो है, आधुनिक महिलाएं हैं और जो यूथ है वो भी सोचता है, वो ये है लक्ष्मण रेखा, है ना। लक्ष्मण रेखा की या एक लकीर की बात आए तो लक्ष्मण रेखा का नाम सुनते ही जहन में रामायण का प्रसंग याद आ ही जाता है। बिल्कुल, जो जहां मर्यादा और सुरक्षा के लिए एक लकीर खींची गई थी। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आज के दौर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस रेखा के क्या मायने हैं?
0: असल में समीना होता यह है कि ये लक्ष्मण रेखा हमारे भीतर छिपी वो ताकत है, वो आत्मनियंत्रण है, जिसे हम हर उस चीज को ना कह सकें जो हमारे लिए सही नहीं है, है ना। तो चाहे वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला अस्वस्थ खान पान हो, हमारे मन को भटकाने वाले कोई नकारात्मक विचार हो, या फिर हमारा कीमती समय चुराने वाला
1: सोशल मीडिया की लत हो। तो जब हम खुद के लिए एक सीमा तय कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा में मोड़ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी चीज को ना कहना बहुत मुश्किल है,

0: है ना, जब सामने कोई लुभावनी चीज हो, मन करता है हमारी फेवरेट कोई डिश है ना, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उसके लिए अपने आप को रोक नहीं पाते. या फिर जब पढ़ाई या काम के बीच में आलस हमें घेरने लगती है, तब खुद को रोकना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. लेकिन सखियों, असल हिम्मत और असली मानसिक ताकत उसी में है कि हम उस पूरे भटकाव को पूरे हक और गर्व के साथ में ना कहें कि ये नहीं, ये मेरे संकल्प की सीमा से बाहर है और मैं इसके लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच करके तैयार रहूंगी कि मुझे ये नहीं करना है.
1: हाँ, और ना कहना किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने सुनहरे भविष्य और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाने जैसा है. शुरुआत में ये जो लकीर हम खींचते हैं अपने लिए और ये जो अनुशासन हम बनाते हैं अपने लिए, थोड़ा सा कड़क लग सकता है, पर यकीन मानिए यही जो डिसिप्लिन है हमें उन पछतावों से बचाता है जो सीमा लांघने के बाद हाथ लगते हैं.
0: बिल्कुल. तो आज के इस सफर में जब हमने इतनी सारी रेखाओं की बातचीत की है, तो हम इस महफिल में हम सब मिलकर एक वादा करें, वादा खुद से करें कि हम अपने जीवन में एक ऐसे ही अदृश्य लक्ष्मण रेखा को खींचेंगे जो हमारे आत्मसम्मान, हमारी सेहत और हमारे लक्ष्यों की रक्षा करेगी.

0: जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम दौड़ते तो आज में हैं, लेकिन हमारी आंखें कल के नतीजों पर टिकी होती है। जब नतीजा मन मुताबिक नहीं होता तो उदासी घेर लेती है।
1: सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़े थे, और यह वह कालजयी संवाद है जो आज भी हमारे जीवन को सबसे बड़ा हमारे जीवन का सच है।
0: हे केशव, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन भ्रमित है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? यदि अपने ही लोगों को खोकर विजय मिली तो उस जीत के सुख को का क्या मोल? मुझे इस कर्म का फल सिर्फ दुख और विनाश दिखाई दे रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता।
1: लेकिन कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए शांत स्वर में बोलते हैं, पार्थ, तुम आज भी खड़े होकर कल की चिंता कर रहे हो, तुम परिणाम के मोह में बंधे।

0: हो। सुनो अर्जुन, ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल की इच्छा नहीं करो। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा को करोगे तो तुम उसमें फंसोगे, तुम्हारी उसमें आसक्ति बनेगी।
1: बिल्कुल, लेकिन माधव, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है? यदि मुझे पता ही नहीं हो कि मेरी मेहनत का परिणाम क्या होगा तो मेरी प्रेरणा कहाँ रहेगी? क्या निष्काम होना उदासीन होना नहीं है?
0: नहीं नहीं, निष्काम होने का अर्थ उदासीन होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुक्त होना है। जब तुम किसी कर्म को करते हुए उस फल से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम भविष्य की उम्मीदों या हार के डर से बंध जाते हो। यही आसक्ति है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से।
1: आसक्ति से क्या नुकसान है?
0: तो इस संवाद में श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसक्ति ही हर दुख की जड़ है। जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो क्रोध बढ़ता है, निराशा बढ़ती है और बहुत सारे दुखों का जन्म होता है। और यदि परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो भी जाए तो भी उसका खोने का डर रहता है, तो
1: वो हमें जीने नहीं देता। कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करो, फल को मुझ पर छोड़ दो, यानी भगवान पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी ऊर्जा उस कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लग जाती है, और वही सच्चा योग है। और फिर फल पर मेरा नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण केवल मेरे प्रयासों पर है, और आसक्ति ही बंधन है और कर्म ही मेरा धर्म है।
0: तो ये संवाद हम सबके जीवन में, जब हम कर्म की बात करते हैं, लकीरों की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो ये जब संवाद याद आता है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, तो ये हमें यही सिखाता है कि कर्म करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। हाँ, भाग्य बड़ा है, भाग्य में अगर कर्म होता है तो ही हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म को छोड़ नहीं देना है। ये संवाद हमें यही सिखाता है। तो जो अर्जुन को सिखाया भगवान कृष्ण ने, वही आज मैनेजमेंट गुरु भी सिखा रहे हैं। फोकस करो अपने काम के ऊपर, है ना, अपने आउटकम पर फोकस मत करो।
1: बिल्कुल।
0: तो अक्सर हम परीक्षा के नंबरों में, नौकरी के प्रमोशन में, रिश्तों के नतीजों में इतना उलझ जाते हैं कि आज को जीना और ईमानदारी से काम करना भूल जाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि आपको कर्म करना है, क्योंकि वह आपके हाथ में। उम्मीदों को छोड़िए, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती है तो दर्द भी होता है। फल से मत जुड़िए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। और जब आप बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के अपना शत प्रतिशत देते हैं तो काम बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। तो चलिए आज से नतीजों की फिक्र छोड़कर सिर्फ बेहतरीन कर्म को करते हैं।

0: तो समीना जी, ये जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब इस ड्रामे में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। खुलकर हंसिए, दिल से रोइए, अपने से प्यार कीजिए और जो भी किरदार आपको मिला है उसमें जान फूंक दीजिए, क्योंकि जब ये शो खत्म होगा ना और पर्दा गिरेगा तो तालियां इस बात पर नहीं बजेगी कि आपका रोल कितना बड़ा था, बल्कि इस बात पर बजेगी कि आपने उसे निभाया कितने कमाल तरीके से था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि हाथों की रेखाओं में सिर्फ शगुन अपशगुन मत ढूंढिए, इन हाथों को फैलाकर किसी की मदद कीजिए, इन्हें उठाकर अपने सपनों के लिए उड़ान भरिए, क्योंकि असली किस्मत लकीरों में नहीं आपके इरादों में होती है। और आज के नारी वाटिका प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे फिर और बातें, कुछ और जज्बात लेकर के, और चलते चलते आपको नारी वाटिका की टीम से रूबरू करवाते हैं। HPT ट्रांसमिशन से हमारे सहयोगी रहे विक्रम सिंह भाटी व प्रेम किशोर सेन,

0: और कंट्रोल रूम से थे नरेंद्र सिंह राठौड़, एफएम से दिलीप सिंह परमार और पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना की थी सफलता चारण ने और इसी के साथ आप तक प्यारे प्यारे गानों को इस पूरे प्रोग्राम को पहुंचाया राजेंद्र जी ने और इस प्रोग्राम में एक बहुत प्यारी सखी मेरे साथ बैठी है समीरा जी
1: और मेरे साथ बैठी है सखी आशा। तो
0: हम दोनों को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक
2: गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई

0: द्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time.
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched.
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
6: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और

0: पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ हार्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का

0: रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: की एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में, पिघल पिघल के।

0: सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो
1: और
2: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं
1: जी,
2: या आप क्या क्या चीजें करते हैं, तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ।
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ, किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राहीबाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
2: हाँ।
1: चाय दिवस, चाय की चुस्किया लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत जहां

0: पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी इतना तापमान चल रहा है उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाहिए, चाहिए।
0: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीज जो होती है वो चाय होती है। दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम मान देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
0: करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहां वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझी जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ

0: पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
2: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही मराही भाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए,
1: चाय मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। हाँ। ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सब हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, यहाँ जैसे हमें मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो

0: शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते. और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है.
1: बिल्कुल. और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है. और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है. और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं.
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं.

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल, पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है, ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर.

0: तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे।
1: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा?
0: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
1: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर,
0: स्वादिष्ट मिलती है
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की
2: थी। अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया
1: है। हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
2: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वा।
1: क्या बात है,
2: क्या बात।
1: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगा टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
2: आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा

0: मत दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
1: जी
0: बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवान दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती
1: चाय की पहले भी करवा लिए जाते हैं
0: कप चाय मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
0: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है, उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षुता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है। हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भाई देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती है कि मेरी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फोबिया था गुब्बारे से, मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
2: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
1: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
2: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों

0: मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता है वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें।

0: और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविद भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविद भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजुमल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: तो विविद भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगे। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा, दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: जी अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियाँ नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए
1: जी? आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सती सैलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, नेहा संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोले दिल ने सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: दिल

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर, आजकल तो पक्षी की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया तो दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, ज्योत सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है, जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है।

0: चार और गाने के बोल है, कसमे बादे प्यार हसब बातें हैं बातों का क्या।
1: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक तैयारी कर देते हैं आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। चलता रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन।

0: मेरे को भोजन करने का खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
1: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
0: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है
1: जी,
0: धर्मेंद्र हेमामालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं,

0: तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आपको एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादर जी अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो दो तीन दिन पहले बारिश हुआ था जी। तो
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है?

0: है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है? देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी?
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है, वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं? मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग है, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लश्कर। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, वीर रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने, BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबरे ग्राम सामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ भाई।
0: क्या हालचाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमारे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही के पिछले साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या का कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं? तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा सोची बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा सोची बमाजा बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले काटी।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई। दिल दीवाना दिल सजना के मानना ये पगला है, समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.5।

0: एक मेगा हर्ट्स पर। शाम के 5 बज चुके हैं, सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: हेलो जी, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। जी हाँ, आपका स्वागत है आज की शानदार सफर में। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज दिन विशेष है म्यूजिकल कहानी। तो दोस्तों, चलिए शाम को शुरू करते हैं इस खास गीतों के साथ। और आज के सफर में हम दो रेडियो बढ़िया आपके साथ जुड़े हैं। मैं आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
2: और मैं आपकी अपनी माधवी पुरोहित। कई सारी बातें करेंगे और सुनेंगे ढेरों गाने इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक। और ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी कूल वाइब्स के साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि फ्रिज खोलते ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। और हाँ, और ऐसा हम नहाने के बाद भी लगता है कि जैसे हम मैराथन से भाग कर आए हों।
1: बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आपने। और इन गर्मी के दिनों में हमें कई बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बार बार पानी पीते रहना और अच्छा खाना खाते हुए हमेशा अपना ध्यान रखना।
0: इसके साथ आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आप धूप में निकलें तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें।
1: बिल्कुल। और बाहर का जंक फूड जितना हो सके उतना कम खाएं, ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल अवश्य करें।
0: तो दोस्तों,

गर्मी के मौसम में धैर्य और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी डालते रहें और जो जानवरों के लिए पॉट रखे हैं उसमें भी पानी डालते रहें। दोस्तों अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो, जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे। दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये फीलिंग्स का नाम है। सुबह के फ्रेश स्टार्ट हो, दोस्तों के साथ गॉसिप हो या फैमिली के साथ प्यारी सी बातें, हर मोमेंट चाय के बिना अधूरा लगता है।
1: बिल्कुल, तभी तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि घर में मेहमान आए, चलो चाय बना लेते हैं, मूड ऑफ लगा है, चलो चाय पी लेते हैं। दोस्तों, जो चाय है हमारी कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, किसी भी गेस्ट का वेलकम करना हो या बारिश का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय मूड फ्रेश कर देती है।
0: और प्रज्ञा, आज का दिन टी फार्मर्स और वर्कर्स के लिए मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए भी मनाया जाता है, जो दिन रात मेहनत करें हम तक चाय पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अपनी फेवरेट चाय का एक कप उठाइए और इंजॉय कीजिए इंटरनेशनल टी डे।

0: दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी कोशिश भी दूसरों के अंदर हिम्मत जगा देती है। जी हाँ, जिंदगी में बदलाव हमेशा छोटे कोशिश से ही शुरू होता है। अगर हम सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएं, तो वो कोशिश कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हर बड़ी समस्या का हल हो सकता है, चाहे वो छोटा सा ही कोशिश क्यों ना हो।
1: इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन अब मन हो चला है एक प्यारी सी कहानी सुनने का। इस कहानी का नाम है प्रयास करो तमाशा मत देखो।
0: एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी साधारण सी जिंदगी में खुश थे। सुबह खेतों में काम करना, शाम को चौपाल और रात को सुकून भरी नींद, बस यही उनकी दुनिया थी।
1: लेकिन एक गर्मी की दोपहर अचानक गांव के पास जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग धीरे धीरे पूरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में धुआं आसमान तक फैल गया। लोग डर गए।
0: हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई अपना सामान समेट रहा था, कोई बच्चों को लेकर भाग रहा था, तो कोई बस खड़े होकर तमाशा देख रहा था। सबको लग रहा था कि अब कुछ बचेगा ही नहीं।
1: उसी जंगल के पास एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसने देखा कि आग लगातार बढ़ रही है और कोई उसे रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा है।
0: वह तुरंत नदी के पास गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और उड़कर आग पर डाल दिया।
1: वह बार बार यही करती रही। उसकी छोटी सी चोंच में बहुत कम पानी आता था, लेकिन उसके हौसले में बहुत बड़े थे। पास के पेड़ पर बैठा एक कौवा ये सब देख रहा था। वह चिड़िया का मजाक उड़ा रहा था और बोला,
0: अरे तेरी छोटी सी चोंच में पानी से भयानक आग बुझ जाएगी क्या? तू मेहनत बेकार में कर रही है। चिड़िया ने बिना रुके जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मेरी कोशिश से आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब भी इस आग की बात होगी तो मेरा नाम कोशिश करने वालों में होगा, तमाशा देखने वालों में नहीं।
1: चिड़िया की ये बात कुछ गांव वालों ने सुन ली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, अगर इतनी छोटी सी चिड़िया हार नहीं मान रही तो हम इंसान होकर क्यों डर रहे हैं।
0: बस फिर क्या था, किसी ने बाल्टी उठाई तो किसी ने मिट्टी डाली, कोई नदी से पानी लेने गया, बस धीरे धीरे पूरा गांव आग बुझाने में जुट गया।
1: कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। पूरा गांव बच गया। उस दिन गांव वालों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। किसी भी समस्या के सामने सिर्फ खड़े होकर डरना आसान होता है, लेकिन छोटा सा प्रयास भी बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
0: तो दोस्तों, जिंदगी में कई बार हालत उस आग के तरह होंगे जिन्हें देखकर हम सिर्फ कई बार डर जाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी कोशिश भी उस आग जैसी मुसीबत को भगाने के लिए काफी है।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आप शो को एंजॉय कर रहे अपने दो रेडियो बड़ीज के साथ, आरजे प्रज्ञा और आरजे माधवी के साथ।
5: बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे हैंडमेड आइटम्स की, यानी वो चीजें जो मशीन से नहीं बल्कि प्यार, क्रिएटिविटी और मेहनत से हाथों से बनाई जाती है।
4: जी हाँ दोस्तों, घर में रखे पुराने कपड़े या फिर कोई कांच की बोतल हो या फिर जैम या अचार का कोई जार हो, ये सब आजकल जो है आर्ट फॉर्म में सामने आ रहे हैं। जी हाँ, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बढ़ते इस ट्रेंड के बीच हम पुराने सामान को हैंडमेड एंड होम डेकोर के आइटम की तरह यूज कर रहे हैं।
5: और प्रज्ञा, आजकल का यूथ भी हैंडमेड क्राफ्ट में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और कभी कभी ये हॉबी और अर्निंग का सोर्सेज भी बन जाती है।
4: जैसे कि कांच की जो बोतल है या फिर जार है, उसको पेंट करके हम कुछ नया डिजाइन डेवलप करके उसको सुंदर सा फ्लावर वास बना सकते हैं, या फिर कैंडल का भी आजकल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, कुछ भी हो, आपको एक हैंडमेड आइटम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मेहनत लगेगी, पर उसकी डिमांड बहुत अच्छी है।
5: तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है तो उसे एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हाथों से बनी चीजें सिर्फ सुंदर नहीं होती, उनमें दिल की फीलिंग्स भी होती है।

0: दोस्तों, बातों का सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, और आज का ये सफर बस यहीं तक। आज के शो में हम दो रेडियो बढ़िया साहब के साथ है, मैं रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल
1: और मैं माधवी पुरोहित।
0: दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई शाम में एक नई ढेर सारी चर्चाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, आसपास वालों का ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही

0: आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं
4: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

संगीत की दुनिया के कुछ नगमे सीधे दिल में उतर जाते हैं। बीते दौर के उन गीतों में एक ऐसी कशिश थी जो आज के इस शोर में कहीं खोसी गई है। कुछ तो बात है उन धुनों में जो मैं हर बार अपनी तरफ खींच लाती है, और आज कुछ ऐसे ही बेहतरीन नगमों के साथ हाजिर है मैं, आपका रेडियो हम सफर। चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं और एक बार फिर जीते हैं उस सुनहरे दौर को किसी हसीन सपने की तरह।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से कुछ ही पलों में।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जयमाला। आज इस सफर में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे वीर जारा फिल्म से, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, संजीव कोहली का संगीत था। और अब लीजिए सुनते हैं भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में।
1: अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

भारतीय सेना गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में। लीजिए कारवां फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में।

कारवा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन का म्यूजिक था।

यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा मर जाओ।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। जयमाला में आगे ये गीत। किशोर कुमार की आवाज, सागर फिल्म से ये गीत। जावेद तक ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: पिटारा,
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आप।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लम्हे फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और शिव हरि का संगीत। लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म से ये अगली पेशकश। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, शिव हरि का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से, प्रोग्राम जयमाला।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर।

0: दोस्तों इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है?
1: म्यूजिक ही करते रहना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ऐसी गोल नहीं है। म्यूजिक से जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रह के जितना कर सकता हूँ उतना करना
0: जी। तो जो भी आपने सोचा है उसके लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद सीधे तो म्यूजिक की तरफ बढ़े नहीं होंगे?
1: हाँ, तो
0: और जैसे आमतौर पर

0: हमारे अभिभावक हमारे माता पिता घर में ये उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री कर ली भाई, अब कोई नौकरी करो या कोई अपना व्यवसाय करो,
1: राइट,
0: है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आपके सामने आपके लिए भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा आपसे भी उम्मीद की जा रही होगी।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: उस उम्र में
1: एक्चुअली हुआ ऐसा था कि इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होती है,
0: जी जी,
1: तो तब मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था, लेकिन उसका

0: गया था, लेकिन उसका जो ज्वाइनिंग था वो पुश हो गया था 6 महीने से, या आई थिंक 1 साल से पुश हो गया था तब.
1: अच्छा.
0: तो जुलाई में पास आउट हुए और फेब में ज्वाइनिंग आने वाला था, ऐसा कुछ था तभी. तो 6 महीने फ्री था और कॉलेज में एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक में कुछ करना है.
1: अच्छा.
0: लेकिन तब क्योंकि मैंने तभी सीखना भी शुरू किया था, मतलब काफी 2-3 साल ही हुए थे क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे ही आप बजाना नहीं शुरू कर सकते, बहुत कुछ सीखना बाकी था तब. तो फिर मैंने सोचा कि मैं साउंड इंजीनियरिंग करके एटलीस्ट म्यूजिक में जॉब करता हूँ
1: जी,
0: ताकि मैं म्यूजिक से कनेक्टेड रहूंगा, मुझे पता चलेगा म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे काम करती है. तो फिर तभी मैंने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स मुंबई में था एक बहुत अच्छा
1: जी,
0: वहां पर, कि मैं कोर्स कर लेता हूँ और जॉब मिल गया है तो अगर तो इधर अगर एक बार प्लेसमेंट में मिल ही गया है तो फिर से मिल ही जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो
1: अच्छा,
0: मैं ये ट्राई करके देखता हूँ.
1: हाँ हाँ
0: तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग किया और फिर वहां से मुझे एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया.
1: अच्छा.
0: उसके बाद तो फिर मैं वही करता रहा 8 साल तक.
1: ये वही था जो आप चाहते थे.
0: हाँ, वो लकीली हो गया, वो
1: म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते थे और
0: आपको जुड़ा रहना चाहता था.
1: रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही जॉब मिल गया.
0: हाँ,
1: क्या
0: तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया और फिर मेरा काम भी म्यूजिक के रिलेटेड ही था. मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करता था, अलग अलग म्यूजिशियन से मिलता था. फिर कुछ सालों के बाद मैं लाइव साउंड भी करने लग गया. तो जो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज होती है, जो परफॉर्मेंस की जो टेक्निकलिटीज होती है, उसके बारे में भी मुझे काफी कुछ सीखने को वहां से मिल गया. और हाँ, और मजा तो आता ही था क्योंकि आप म्यूजिशियंस के साथ ही हो, म्यूजिक की बातें कर रहे हो. तो इस तरह से
1: फिर भी आपके पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल तो कभी आया होगा कि एक इंजीनियर के रूप में आप बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकते थे अपने लाइफ में.
0: हाँ, मतलब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारा डिसीजन खुद लो.
1: अच्छा.
0: ताकि फिर बाद में रिग्रेट हो तो तुम्हारी वजह से हो तुमको.
1: इट्स योर लाइफ.
0: इट्स योर लाइफ.
1: अच्छा अच्छा.
0: कि तो तुम सोच लो, क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट तो होगी. और प्रोफेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उनको भी बहुत आइडिया नहीं था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है तो हम तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे ये फील्ड में बिल्कुल भी. तो यू आर ऑन योर ओन. तो आपको अभी
1: आप अपने निर्णय पे पक्के थे.
0: हाँ, मतलब
1: पूरी तरह से. क्या
0: वो थोड़ा होता है, वो एज में एक स्टुपिडिटी होती है कि अच्छा मैं कर लूंगा, तो फिर आप घुस जाते हो उसमें और फिर
1: नहीं. लेकिन ये एक मजबूत जो है निर्णय ले पाना उस उम्र में भी बहुत बड़ी बात है.
0: हाँ, मतलब वो एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, वो मेरे लिए निर्णय नहीं था. वो एक्चुअली मैंने सिर्फ सोच लिया कि अच्छा ये करना है और फिर इतना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं था तब. तो वो संभव
1: उस उम्र में इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि किसी एक निर्णय पे टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है.
0: हाँ, वो है. लेकिन वो हो गया, मतलब समहाउ फिर मैं वो सर्कल में ही घुस गया. फिर उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ ही सराउंडेड हो तो आपको स्ट्रगल्स दिख रही है और आपको दिख रहा है कि अच्छा पूरी इंडस्ट्री ये कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही.
1: अच्छा.
0: पूरी इंडस्ट्री वैसी है ना. तो जब आप काम करने लगते हो और एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हो तो आप को लाइवलीहुड हो रहा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा पूरी इंडस्ट्री होती है जो सरवाइव कर रही है.
1: हाँ.
0: और बहुत काम है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है
1: जी.
0: आपको सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू डू द वर्क
1: जी.
0: तो ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कि आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है. आप
1: काम बहुत है, टास्क बहुत है, करने वाले चाहिए.
0: आपको विलिंगनेस भी होना चाहिए
1: जी.
0: और आप सीखते रहना पड़ता है. और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डिग्री ले ली हो तो आपको, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क है तो आपको अपने इम्प्रूव करते रहना पड़ता है
1: जी. जी बिल्कुल.
0: तो एक वो चीज है और एक लक का भी है. मतलब मुझको ऐसा भी होता है कि आपको एक अच्छी संगति मिल जाती है और फिर आप उसमें सेट हो जाते हो. तो फिर वो वहां पे उसी तरह से हो गया था एक्चुअली साउंड इंजीनियरिंग में भी कि उसके बाद एक स्टूडियो में गया. फिर
1: जी.
0: वो स्टूडियो के ओनर भी मतलब काफी मतलब मेरी एज के थे वो. जस्ट दैट उन्होंने स्कूल के बाद ही सीधा स्टूडियो ही ओपन कर दिया 12th के बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिग्री. सो ही वाज अ कंपोजर, उनके साथ काफी सीखा काफी
1: जी, जी.
0: तो उस तरह मजा आ रहा था तो फिर कर रहे थे.
1: क्या बात है. और ये उम्र होती है जब बहुत से हमारे दोस्त होते हैं और वो दोस्त भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं हमें, मगर आपको संगत मिली उन साउंड रिकॉर्डिंग.
0: हाँ हाँ हाँ.
1: स्टूडियो के ओनर
0: मेरे दोस्त भी एक तो ऐसा है ना कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ तो मेरे दोस्त भी ऐसा बहुत लिमिटेड है.
1: अच्छा.
0: और मोस्टली मेरे जो दोस्त है वो भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग इंजीनियरिंग ही. हाँ, कर रहे हैं. हाँ. तो फिर वो लोग भी काफी सपोर्टिव ही थे.
1: क्या कोई खास दोस्त जिसको बारे में आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो.
0: एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, अश्विन है, मतलब अभी भी वो अभी भी है तो हम दोनों ने एक्चुअली साथ में कोर्स करना शुरू किया। अच्छा। बचपन का ही दोस्त है, वो भी मेरे साथ ही बड़ा हुआ है कॉलेज में, वो भी गिटार प्लेयर था, वो क्लासिकल में नहीं आया, वो रॉक म्यूजिशियन ही था। और फिर उसके बाद तो हम दोनों ने साथ में साउंड इंजीनियरिंग किया, साथ में ही स्टूडियो में काम किया। अभी वो प्रीतम के साथ हेड, वो पूरा उसका साउंड डिपार्टमेंट संभाल रहा है।
1: क्या बात। तो संगीत आपकी

0: सबसे पहली पसंद है, मगर इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? आपके शौक क्या क्या है?
1: मुझे घूमना पसंद है, ट्रैक करना पसंद है।
0: अरे वाह।
1: बाकी आई थिंक बचपन में मैं जो कॉलोनी में रहता था वहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स थे, तो स्विमिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, तो वो सब एक स्पोर्ट्स वाला जो एंगल है।
0: हाँ।
1: तो अभी भी मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ कभी कभी, वो एक अच्छा लगता है मुझे।
0: जी जी।
1: अभी रिसेंट एक शौक है जो डिस्क्राइब कैसे करूं पता नहीं, बट कॉफी कॉफी का एक शौक काफी है आजकल। तो मतलब जो स्पेशलिटी कॉफी है, बीन्स लाओ और फिर उसको ग्राइंड करके आप जो कॉफी बनाते हो।
0: अच्छा। कॉफी बनाने का शौक?
1: कॉफी बनाने का मतलब आप एक तो इंस्टेंट कॉफी होती है जो आप डालते हो, पाउडर होता है, उस पर पानी डालते हो और वो घुल जाता है।
0: मरी कॉफी के बीज लाकर उन्हें भून कर
1: लाकर उसका
0: और उसको पीस करके फिर वो कॉफी बनाई जाती है।
1: तो उसकी एक बहुत मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है अब।
0: अच्छा।
1: तो वो देख देख के उसका शौक आ गया, तो फिर वो एक बहुत बड़ा शौक।
0: कई बार हमारे शौक हमारे काम को प्रेरित करते हैं, उनमें कुछ नयापन लाते हैं।
1: हाँ,
0: ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो बेसिकली गिटारिस्ट है मगर वो पेंटिंग भी करते हैं।
1: राइट।
0: तो गिटार बजाते बजाते उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, तो उसके अनुसार उनका पेंटिंग पेंटिंग बन जाता है।
1: राइट।
0: कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है?
1: नहीं, तो आर्ट में तो मैं यूजुअली गिटार ही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। बट एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आप तो ऐसा लगता है लोगों को कि आर्टिस्ट ऐसे खाली बैठे रहते हैं बहुत बार। या मतलब और अगर कोई नॉर्मल, अगर आपका कोई 9 to 5 जॉब हो, आपको लगेगा कि अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इतना देर खाली, पूरा दिन खाली है तो कुछ और काम कर ले। बट होता है क्या कि वो जो खाली फेजेस होते हैं, जब आप अकेले में होते हो या जब आप चल रहे होते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं चल रहा होता हूं और नए नए म्यूजिकल आइडियाज आते हैं।
0: अच्छा।
1: या मैं कहीं ट्रैक पे जा रहा होता हूं, जब इंस्ट्रूमेंट से दूर होता हूं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: हाँ,
0: आप कहीं घूम रहे हैं तो नेचर से भी आपको
1: नेचर से भी काफी
0: है।
1: हाँ
0: जी जी जी।
1: तो जब अकेले होते हो और आपके पास कुछ होता नहीं है, फोन नहीं होता है, तो आप कुछ सोच में होते हो, तो उसमें से जो आइडियाज आते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं फिर वापिस आके जब आप ट्राई करते हो तो।
0: क्या बात, बहुत खूब। अनिकेत जी, क्लासिकल म्यूजिक में कई बार सुगम संगीत की झलक भी सुनने को मिलती है।
1: हाँ।
0: बंदिशें बजाई जाती हैं।
1: राइट।
0: तो ऐसा कोई टुकड़ा, कोई छोटा सा पीस जो गजल की तरह हो या किसी सुगम संगीत की तरह हो, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें?
1: आज जाने की जिद ना करूं, बजाओ थोड़ा।
0: वाह वाह वाह, स्वागत है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो और यूं ही धुने सुनाते रहो, मगर किसी भी आयोजन के समय की अपनी सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से आप जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसके लिए ढेर सी शुभकामनाएं, और यहां आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। अगले सप्ताह हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
2: सुनिए,
1: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
2: पागल खाने को।
1: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुक्ता खींच के मारा है, सारा भेजा मारा गया। लगता है आप शायर हैं?
2: जी नहीं।
1: तो फिर कवि हैं?
2: जी नहीं।
1: तो फिर आप?
2: जी
1: तो फिर
2: मैं
1: आप?
2: सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
1: समाज सेवक यानी?
2: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और टिकाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
1: आप बिल्कुल

0: फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का, आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी डॉक्टर को मारिए गोली, पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे
1: जी?
0: मेरा मतलब है आप क्या पिएंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप
0: जी मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे
1: जी? नहीं।
0: बरेली, रांची
1: जी? नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी
0: होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती
0: है? मैं तो यहाँ की बात कर रहा था।
1: यहाँ की? मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया।
0: अच्छा ठीक चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए क्या?
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी?
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है अब आप बैठ जाइए। यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा? तुम कहते हो तो लो मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: ठीक।
0: मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा। मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार जब

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार हैं।
2: थैंक यू।
1: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।

0: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहाँ से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा,
0: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
0: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
1: सुनाइए।
0: हाँ तो मैं कह क्या रहा था?
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
0: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुँच गए।
1: अच्छा,
0: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
1: अरे बाप रे,
0: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया,
1: वाह,
0: फिर उसका पेट दबाया, फिर उल्टा किया, फिर पेट दबाई,
1: वाह,
0: फिर उल्टा किया, फिर आखिर में उसका पैर दबा दिया। और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहाँ आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
2: राम भरोसे
0: जी,
2: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
3: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था, ये क्या हुआ?
2: समझदार नहीं था, फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
3: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
2: लटकाया था, लेकिन क्यों?
3: साहब भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
1: वेरी गुड।
0: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज बम्मा फेंक कर मारते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
1: क्यों?
0: उधर मरीज काट खाते हैं। और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
1: क्यों क्यों?
0: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
1: अच्छा,
0: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल तुम्हें मार देंगे। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
2: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
0: जी,
2: तुम फिर आ गए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
2: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप?
0: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
2: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है, इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, इनकी नाक मोम की है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है, आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
0: चक्कू से।
2: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं?
1: आप चुप रहिए
0: जी।
2: हाँ तो राम भरोसे
0: जी सर,
2: तुम मेरी नाक काटोगे
0: जी?
2: पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर ये साहब भी बैठे हैं
0: जी,
2: इनसे बात भी तो करनी है ना।
0: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
2: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
0: अच्छा
2: जाओ।
0: थैंक यू सर, साहब को सलाम करेगा परेड, सलाम 1 2 1
1: जान बची जान,
0: 1 2 1
1: जान बची जान,
0: 1 2 1
1: जान बची जान।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।

तेरी बातों में उलझा, ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोमी और तनिष बागची की आवाजों में नीरज राजावत ने इसे लिखा था और म्यूजिक तनिष बागची का था।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ओके जानू, ये था फिल्म का नाम। जॉनिता गांधी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था, AR रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक के बाकी के नगमे कुछ पलों में।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत कार्यक्रम चित्रलोक में। कपूर एंड सन्स फिल्म का नाम है, अरमान मलिक अमाल मलिक की आवाजें।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में ये गीत राबता फिल्म से। इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।

फिल्म पंगा से ये गीत शाहिद माल्या और असीस कौर की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज

स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस

0: 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर

0: ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके. इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है.
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की.
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है. इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला. यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है. ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: ये आकाशवाणी है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है परामर्श के अनुसार कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है एक रिपोर्ट
3: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
2: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है
4: मौसम विभाग के अनुसार बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु

0: पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरुरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरुरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिर वही रात है, रात के इस पहर। ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

0: यह है विविध भारती।
1: आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है गब्बर मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज।

0: बैठी हुई जिंदगी जैसे हर पल नहीं और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यश राज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित

2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: ये सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आज की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है। तेरी एक झलक को तरसती है ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

तेरी पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है।

या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, रदना।

0: मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
1: विविध भारती, जो हर पल है आपके।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। रात्रि के ठीक 11 बज चुके हैं। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा

आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन। आपके साथ तबले पर हैं शब्बीर हसन।